कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्मयोग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने के प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार श्रोताओं, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे लूसी। श्रोताओं, आज के इस प्रसारण सभा को आप सभी तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता विमल शर्मा। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं ढेरों जानकारी वर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों के अलावा देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा की शुरूआत करते हैं।

श्रोता, आपको अब से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाली शेष कार्यक्रमों के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। तो कुछ ही पलों में 6 बजे को आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 6:10 को प्रसारित होगा कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे दोनों पोलो भक्ति गीत तबा कुका एंड पार्टी की आवाज में। 6:40 को प्रसारित होगा गालो भाषा में समाचार और ठीक उसी के बाद 6:45 को कार्यक्रम सुबह सवेरे पेश होगा। को आप सुन पाएंगे आपातानी भाषा में समाचार। 7:15 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट और ठीक उसी के बाद 7:45 को आप सुन पाएंगे ताइगिन भाषा में समाचार और ठीक उसी के बाद 7:40 को प्रसारित होगा कार्यक्रम सदाबहार। ठीक 8 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। 8:40 को आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर और 9 बजे प्रसारित होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: 12:30 से लेके 1 बजे तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आज के मेहमान, जहां आप सुनेंगे एक वारदात श्री तालो एंथनी से, जो एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है। तो दोस्तों ये थी अब से लेकर दिन के 12 बजे तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। श्रोताओं कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्य

0: functioning. Tiny Cape Verde pulled off a stunning result in its World Cup debut, shutting out heavily favoured Spain. An impressive performance by a 40-year-old goalkeeper, Virginia, helped Cape Verde play one of the favourites to in the tournament to a 0-0 draw. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब वक्त है पेश करने का कार्यक्रम भक्ति गीत, जहां आप सुनेंगे दोन्यी पोलो भक्ति गीत तबा कुकायन पार्टी की आवाज में।

0: Yono abago dipimim mimpusa kadu dagam ne quality kadba rutkam tu. Second industrial development Molik nam sigi chief minister nimbu pema kandu gula deputy chief minister nimbu chona main gaya loke Molik duna kem tu. Mintala park sigi farmer oke entrepreneurs gadiga legaba ma jiba dinsin abago ba rira sogo state ga economic development oke unemployment rate ko kagur de dom tu. Donyanalo em leni gombu BJP ga nyere gola nyenye dudak sogo desam ne yakago development Abalokam Kagur Geba Amdula District Mandal President of Karyakartas Gadga Inkolo Pragati Padi Yatra Lo Imingatu Tangadun Galo Minken Agam Sin Makaswani Tanagar Loka Tafadu Lapina Burudu Nam Sub Junior State Ranking Badminton Tournament 2026 Amne Kelo India Indoor Badminton Stadium Tanagar Lo Maragolo Kurudap Kasogo Arunachal Pradesh Go Chamni Gola Akan District Loka 174 players go Perkam Insur Amtu Mental tournament so kedum ramne 276 match go rira amdula tournament sigimne capital complex badminton association ga de rigaduna kam tu Arunachal Pradesh so ko nidum anigo nali rumita kinela nirme domin karwak muniga nitom pakso mola ponu bari mola state ga folk theater of music in the swiss amne promote namam kadula nali rumita kinne ustad bismillah khan yuva puraskar amanamne jitu ओके निर्मित दोमिन कारबाग ने गुदा संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड हमने जीतो सिगिम काला चीफ मिनिस्टर निम्र फेमा कांदो सोशल मीडिया लो क्विक अगम हमने जिलेन तू तवांग डिस्ट्रिक्ट लो मरो गलो को स्पेशल इंटेंसिव रिविजन फेस 3 हमने रिजर्व गे बाम दुला नरो बेलो हमने अलु ब दोलु लो इंगो दोला पिंको ब इंगो दोला इलेक्ट्रो रोल हमने मोतु काम तू दोनानो लो बेलो गदगम बेले बूट लेवल एजेंट हेड गाव बुरा पंचायत लीडर्स ओके यूथ लीडर्स गदमने Kaba dugu tu lal jaba soko belo kadam ne nunu kadu min stok amla jamin situ. Doni lopi go ba lodum nam finishing course program amne government ITI pangin lo rirap ka. Soko government scheme amne mento min sido ba interview am yoga face kendak da agam ne mento min sido boka aburao kada. Boi bolo lagda kam yoga further studies na yoga rikendak da agam ne mento min sido ba amla. Program sigim ne skill development of entrepreneurship government of Arunachal Pradesh gad rigaduna kam tu mental asigi state ga utam ne nagna skill sam chendak ba rigaduna kam tu meteorological center ithanagara chamni gola aken district go yellow alert zone jilen tu sok district ga sogo nido wa tirtu obai do obai de do amla meken jitu ka tanaga da sirwa galo meken agoma ga Tanaga dam lakhen go ta rogam jabam dula sirwa galo pigo yab ne mun gorab dula kaji go no tatvi arub nirmal lugga ga deklo ka gogir go tala ju
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गालो भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का रोड एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है गालो श्रोताओं का कार्यक्रम जारी रहेगा हमारे मीडियम वेव चैनल 444.4 मेगाहर्ट्ज यानी 675 किलोहर्ट्ज पर दोस्तों अब वक्त है पेश करने का आज का कार्यक्रम सुबह सवेरे लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये बेहतरीन गीत इसका नाम है तेरा नाम लिया तुझे याद किया

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सुबह की इस ताजगी भरे बेल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वास्थ्य के विषय पर जो धीरे धीरे हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं नसों से जुड़ी समस्याएं के बारे में। अक्सर हम सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के हाथ सुन्न हो जाते हैं, पैरों में झनझनाहट महसूस होती है, गर्दन या कमर में दर्द रहता है या फिर शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी महसूस होती है। कई बार इन सभी समस्याओं के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण होता है और वो है नसों पर पड़ने वाला दबाव यानी नर्व कंप्रेशन। दोस्तों, हमारा पूरा शरीर एक बहुत ही अद्भुत संचार तंत्र पर काम करता है। दिमाग और रीढ़ की हड्डी से निकली हुई नसें शरीर के हर हिस्से तक संदेश पहुंचाती है। जब इन नसों पर किसी कारण से दबाव पड़ता है तब सिग्नल का आना जाना प्रभावित हो जाता है और कई तरह की समस्याएं शुरू हो सकती हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि ये नर्व कंप्रेशन होता क्या है। सरल शब्दों में कहें तो जब कोई हड्डी, मांसपेशी, लिगमेंट या अन्य ऊतक किसी नस को दबा देता है तो उसे नर्व कंप्रेशन कहा जाता है। इसके कारण नस अपना काम ठीक से नहीं कर पाती और दर्द, झनझनाहट या कमजोरी जैसे लक्षण सामने आते हैं। अब सवाल उठता है कि ये समस्या किन लोगों में अधिक देखी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं वृद्ध यानी बुजुर्ग लोगों की। उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में कई प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं। हड्डी की मजबूती थोड़ी कम हो जाती है, जॉइंट्स घिसने लगते हैं और रीढ़ की हड्डी के डिस्क पतले होने लगते हैं। इसी कारण कई बार नसें दब जाती हैं और गर्दन, कमर या पैरों में समस्या शुरू हो जाती है। लेकिन सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं, आजकल युवा वर्ग भी इस समस्या से काफी तकलीफ झेल रहे हैं। लंबे समय तक मोबाइल चलाना, कंप्यूटर के सामने बैठना, गलत पोस्चर में काम करना, शारीरिक गतिविधियों की कमी, व्यायाम एक्सरसाइज वगैरह ना करना, ये सब नर्व कंप्रेशन के बड़े कारण बन जाते हैं। आपने शायद देखा ही होगा कि कई लोग मोबाइल देखते हुए गर्दन झुकाकर घंटों बैठे रहते हैं। इसी आदत को आज कुछ रिसर्चर्स टेक्निक यानी टेक्स्ट नेक भी कहते हैं। इसके कारण गर्दन की नसों और मांसपेशियों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक जहां आप सुनेंगे अगला गीत जिसका नाम है तेरे नैना, जो है चांदनी चौक फिल्म से।

दोस्तों आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम सुबह सवेरे में, जहां हम बात कर रहे थे एक ऐसे विषय के बारे में जिसे कहते हैं नर्व कंप्रेशन। तो दोस्तों, नर्व कंप्रेशन के कुछ आम लक्षण होते हैं जो मैं आपको बता दूं, जैसे हाथ या पैर में सुन्नपन होना, यानी आपके लेग्स और आर्म्स नंब हो जाना, झनझनाहट से या सुई चुभने जैसी अनुभूति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पिंस एंड नीडल्स, मांसपेशियों में कमजोरी, किसी हिस्से में जलन या दर्द, चीजें पकड़ने में दिक्कत, लंबे समय तक चलने या खड़े रहने में परेशानी। अगर ये लक्षण बार बार दिखाई दे और लंबे समय तक बने रहे तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आम प्रकार की नर्व प्रॉब्लम्स की। सबसे पहला है सियाटिका। सियाटिका में कमर से निकली हुई एक बड़ी नस जो पैर तक जाती है दब जाती है। इसके कारण कमर से लेकर पैर तक तेज दर्द महसूस हो सकता है। दूसरा है कार्पल टनल सिंड्रोम। ये अधिकतर उन लोगों में देखा जाता है जो कंप्यूटर या कीबोर्ड का अधिक उपयोग करते हैं। इसमें कलाई की एक नस दब जाती है और हाथों में झनझनाहट और दर्द महसूस होती है। तीसरा है सर्विकल स्पॉन्डोलाइसिस। ये गर्दन से जुड़ी हुई समस्या है जिसमें गर्दन की हड्डियों और डिस्क में बदलाव के कारण नसें प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि हम इन समस्याओं से बच कैसे सकते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है सही पोस्चर। चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो या मोबाइल देख रहे हो, अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने की आदत डालिए। दूसरा उपाय है नियमित व्यायाम। रोजाना 30 मिनट चलना, हल्का स्ट्रेचिंग करना, योग करना नसों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है। जैसे कि योग एक्सरसाइज के नाम है तदासन, भुजंगासन, मकरासन और अनुलोम विलोम जैसे योगाभ्यास शरीर की लचीलापन बनाए रखने में सहायक हो सकते हैं। तीसरा उपाय है अपने वजन को नियंत्रित रखना, यानी वेट लॉस करना। अधिक वजन रीढ़ की हड्डी और जॉइंट्स पर अधिक दबाव डालता है। आपके नी जॉइंट्स पे काफी प्रेशर बढ़ेगा, इसी के कारण नर्व कंप्रेशन का खतरा काफी बढ़ सकता है। चौथा है संतुलित आहार। आपको विटामिन B12, विटामिन डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारी नसों के लिए और हड्डियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ये सही मात्रा में आपके खाने पे जरूर होना चाहिए। तो दूध है, दही, पनीर, हरी सब्जियां, अंडा, मछली, पौष्टिक, ये सब डाले आहार में शामिल आपको जरूर करने चाहिए। दोस्तों, आज के युवाओं में एक समस्या बढ़ रही है और वो है शारीरिक गतिविधियों की कमी। लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो आप, घंटों कंप्यूटर के सामने बैठना, ऑनलाइन मनोरंजन और कम चलना फिरना, इन सब हमारे शरीर को सुस्त बना दिया जाता है। याद रखिए, हमारा

शरीर चलने के लिए बना है, जितना अधिक हम सक्रिय रहेंगे उतना ही बेहतर हमारी नसें और मांसपेशियां काम करेगी। तो दोस्तों आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: श्रोता कुछ पलों में आप सुनेंगे आपातानी भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है।
1: आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, सुबह की सुहानी और ऊर्जा से भरी बेला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपके पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। और हम एक बार फिर समय की उन गलियों में चलेंगे जहां इतिहास की अनेक यादें हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, हर दिन अपने साथ कुछ न कुछ खास कहानियां लेकर आता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो इतिहास के पन्ने बदल देते हैं, कुछ दिन ऐसे होते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और मानव सभ्यता को एक नया दिशा देते हैं। आज हम बात करेंगे 16 जून और जानेंगे कि भारत और विश्व के इतिहास में इस दिन का क्या महत्व रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा को। दोस्तों, भारत का इतिहास अनेक गौरवशाली घटनाओं से भरा हुआ है। 16 जून की कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत की वैज्ञानिक प्रगति और राष्ट्रीय विकास की। स्वतंत्रता के बाद भारत ने जिस तेजी से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में उसमें कई महत्वपूर्ण परियोजना और संस्थाओं की भूमिका रही है। जून का महीना भारत में मानसून की आमद का भी समय होता है और कृषि प्रधान देश होने के कारण इस समय का आर्थिक और सामाजिक महत्व भी बहुत अधिक है। हेमंता कुमार मुखोपाध्याय की जयंती। श्रोताओं, 16 जून को भारत के प्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंता कुमार मुखोपाध्याय, जिन्हें हम हेमंत कुमार के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। उनकी आवाज में कुछ एक अलग ही जादू है। हिंदी और बांग्ला संगीत जगत में उन्होंने अपनी अमर पहचान बनाई। ये रात ये चांदनी फिर कहा ना तुम हमें जानो और है अपना दिल तो आवारा, जैसे अनेक गीत आज भी संगीत प्रेमी दिलों में जिंदा है। हेमंत कुमार ने केवल गायकी में बल्कि संगीत निर्देशन में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। उनका संगीत भारतीय फिल्मी संगीत का स्वर्णिम युग का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। विश्व इतिहास में 16 जून। अब नजर डालते हैं विश्व के इतिहास पर। 16 जून 1963 को सोवियत संघ की अंतरिक्ष यात्री वैलेंटिना टेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी। ये घटना केवल अंतरिक्ष विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक महान उपलब्धि थी। वोस्तोक 6 स्पेसक्राफ्ट का नाम था। इसी स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से उन्होंने पृथ्वी का कई बार चक्कर लगाया और साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। आज जब हम अंतरिक्ष अनुसंधान की बात करते हैं, चंद्रयान, मार्स मिशन और अन्य अभिनयों की चर्चा करते हैं, तब वैलेंटिना टेरेश्कोवा का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। दोस्तों, 16 जून को साउथ अफ्रीका में यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। 1976 को सोवेतो अपराइजिंग की याद में मनाया जाता है। इस आंदोलन में हजारों विद्यार्थियों ने शिक्षा और अधिकारों के लिए आज आवाज उठाई थी। युवाओं के साहस और उनके बलिदान ने साउथ अफ्रीका के इतिहास को एक नया दिशा दी और ये दिन उन युवा शक्ति और साहस और सामाजिक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो है बर्फी फिल्म से। आप सुनेंगे श्रेया घोषाल और निखिल डिसूजा की आवाज में आशिया।

दोस्तों 16 जून के बारे में बात करते हुए, 16 जून हमें याद दिलाता है कि विज्ञान और अनुसंधान मानवता के विकास की बुनियाद है। आज हम स्मार्टफोन, इंटरनेट, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जा रहे हैं, लेकिन इन उपलब्धियों के पीछे अनेक वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं की वर्षों की मेहनत छुपी हुई है। ये दिन हमें प्रेरित करता है कि हम ज्ञान की बोझ की खोज कभी ना छोड़ें और सीखने की प्रक्रिया को जीवन भर जारी रखें। दोस्तों, इतिहास केवल युद्धों और

राजनीतिक घटनाओं के संग्रह नहीं है, इतिहास, कला, साहित्य और संस्कृति की भी कहानी है। हर युग लेखकों, कवियों, कलाकारों और संगीतकारों ने समाज को एक नई सोच दी है। तो दोस्तों, आज के दिन हमने क्या सीखा है? प्रिय श्रोताओं, इतिहास का सबसे बड़ा उद्देश्य हमें सीख देता है। वैलेंटिना टेरेश्कोवा हमें सिखाते हैं कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। साउथ अफ्रीका के युवा हमें सिखाते हैं कि एकजुट होकर सामाजिक बदलाव लाया जा सकता है। हेमंत कुमार हमें याद दिलाते हैं कि कला और संगीत समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। और भारत का विकास हमें बताता है कि लगान, परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, हर नया दिन एक पढ़ने की तरह होता है। हम उस पर क्या लिखते हैं, वही हमारा भविष्य को तय करता है। 16 जून हमें याद दिलाता है कि इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो कुछ अलग करने का साहस रखते हैं, चाहे वो कोई एक वैज्ञानिक हो, एक कलाकार हो, एक शिक्षक हो या एक सामान्य नागरिक। हर व्यक्ति के अंदर कुछ विशेष करने की क्षमता होती है, जरूरत है उसे पहचानने की और उस पर विश्वास करने की। तो दोस्तों, ये थी 16 जून से जुड़ी कुछ रोचक और प्रेरणादायक बातें। आशा है कि आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और आपने इतिहास के इन पन्नों से कुछ नई जानकारी और प्रेरणा जरूर प्राप्त की होगी। अब समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन याद रखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है और हर दिन अपने हाथ अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। मुस्कुराते रहिए दोस्तों, सीखते रहिए और जिंदगी के हर पल को उत्साह के साथ जीते रहिए। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, आपसे चाहती हूँ इजाजत, नमस्कार और आपका दिन आज मंगलदाय हो। श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट या आकाशवाणी ईटानगर कारोन FM 103.1 MHz है, जहाँ होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

दोस्तों, अभी आपका स्वागत है कार्यक्रम सदा बहार में। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। और आइए श्रोताओं, अभी आप पापुम्पारे जिले, ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के मौसम समाचार के बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम सभी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। कभी काम का दबाव, कभी पढ़ाई की चिंता, कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां और कभी भविष्य की फिक्र। लेकिन इन सबके बीच अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक विचार के साथ करते हैं तो कठिन परिस्थितियों भी कुछ हद तक सरल लगने लगती है। सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता ने तो अपने आप में एक वरदान है। ऊंचे पहाड़ हैं, हरी भरी वादियां, बहते हुए झरने और प्रकृति की अनमोल देन हमारे जीवन को और अधिक समृद्ध बनाती है। दोस्तों, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन समय की कमी महसूस होती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर दिन कुछ पल अपने लिए निकालें, चाहे वो सुबह की सैर हो।

योग हो, ध्यान हो, या फिर अपनी पसंदीदी पसंद का कोई गीत सुनना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि सुबह के समय हल्का व्यायाम शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक होता है। इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और दिन भर काम करने की क्षमता बढ़ती है। साथ ही सुबह का पौष्टिक नाश्ता भी बहुत जरूरी है। कई लोग जल्दी में नाश्ता छोड़ देते हैं, लेकिन याद रखिए कि नाश्ता हमारा शरीर के लिए पहला ईंधन होता है। संतुलित और पौष्टिक आहार से ही हम स्वस्थ और सक्रिय रह सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, सकारात्मक सोच का अर्थ यह है कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी। इसका अर्थ यह है कि हम समस्याओं का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करें। हर नई सुबह हमें एक नया अवसर देता है। कल की गलतियों से सीखकर आज के दिन बेहतर बनाना ही जीवन का सच्चा प्रगति है। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो है मैं चली फिल्म से। इस गीत के संगीतकार हैं आरडी बर्मन।

नमस्कार श्रोताओं, आज ईटानगर और आसपास के इलाकों में हम बात करते हैं कि आसमान बादल छाए रहने की संभावना है। दिन के समय हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। अधिकतम तापमान लगभग 29 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तक और मिनिमम टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। हवा में नमी अधिक रहेगी। अब अन्य जिलों के मौसम के समाचार में जाते हैं। तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों में अधिकतर स्थानों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान तुलनात्मक रूप से सुखद रहेगा। ईस्ट कामेंग, पाके केसांग और कुरुंग में बादल छाए रहेंगे और कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में कभी कभी दृश्यता कम हो सकती है, यानी अधिक फॉग और लैंडस्लाइड के चांसेस है। क्रा दादी और लोअर सुबानसरी जिलों में दिन भर बादल छाए रहेगा। कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अपर सुबानसरी, शियोमी और लेपरादा के जिलों में मौसम आमतौर पर बादलों से घिरा हुआ रहेगा। कहीं कहीं वर्षा दर्ज की जा सकती है। वेस्ट सियांग, ईस्ट सियांग और सियांग जिलों में मध्यम वर्षा की संभावना है। किसानों को मौसम को ध्यान में रखते हुए अपनी खेती कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी जा रही है। दिबांग वैली और लोअर दिबांग जिलों में आसमान में घने बादल छाए रह सकते हैं। दिन के दौरान हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंजाव और लोहित में भी मॉनसून सक्रिय बनाया हुआ है। कई स्थानों पर बारिश होने का अनुमान है। नामसाई में काफी गर्मी और नमी दोनों अधिक रह सकती है। दिन के समय बारिश के छोटे दौर देखने को मिल सकते हैं। चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग जिलों में बादलों के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। राज्य के अधिकांश भागों में मानसून का प्रभाव बना हुआ है। यात्रा करने वाले नागरिकों से अनुरोध है कि पहाड़ी सड़कों पर सावधानी बरतें और मौसम संबंधी ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखें। तो ये था अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के मौसम का समाचार। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और इस गीत का नाम है दीवाना हुआ बादल।

0: श्रोताओं कुछ पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। आकाशवाणी।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
5: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
4: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रभाव को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय एलएनजी टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
6: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
7: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
8: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
7: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
6: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
9: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में

0: इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
1: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना कर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकने सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
5: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्योम में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at U.S. Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
7: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between our two democracies.
6: India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology.

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। या आकाशवाणी ईटानगर का रोन एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, वक्त है अगला कार्यक्रम पेश करने का। अगला कार्यक्रम है हेलो ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर और मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारी पहचान, हमारी हिस्ट्री और हमारी फ्यूचर से जुड़ा है। हमारा आज का टॉपिक है दोन्यी पोलो और हमारी इंडिजीनियस कल्चर को बचाकर रखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, सबसे पहले याद आते हैं हमारे सुंदर पहाड़, हरी भरी वादियां, नदी और प्रकृति की खूबसूरती। लेकिन अरुणाचल की असली पहचान सिर्फ उसकी प्रकृति ही नहीं, हमारी असली पहचान है हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन और हमारा इंडिजिनस कम्युनिटीज। हमारे बुजुर्गों ने हमें जो विरासत दी है वो बहुत ही अनमोल है। आज से 100 या 200 साल पहले हमारे गांव में लोग प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। सूरज, चांद, जंगल, नदी, पहाड़ उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसी सोच और जीवन दर्शन से दोन्यी पोलो परंपरा का विकास हुआ। दोन्यी का मतलब है सूरज और पोलो का मतलब है चांद। लेकिन दोन्यी पोलो सिर्फ चांद और सूरज की पूजा करना नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। इट इज अ वे ऑफ लाइफ। ये हमारी सच बोलना, प्रकृति का सम्मान करना, समाज के साथ मिलकर रहना और अपनी जिम्मेदारी निभाना सिखाता है। दोस्तों, पहले हमारे बुजुर्ग कहानियों के जरिए ज्ञान देते थे, लोक गीत गाए जाते थे, बच्चे अपने दादा दादी नाना नानी से पारंपरिक बातें सीखते थे। लेकिन आज दुनिया बहुत ही तेजी से बदल रही है। आज मोबाइल फोन है सबके पास, इंटरनेट का एक्सेस है, सोशल मीडिया है। ये सब जरूरी भी है और फायदेमंद भी है, लेकिन कई बार इन सब के बीच में हम अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। आज अगर हम किसी स्कूल के बच्चे से पूछे कि दुनिया के बड़े बड़े देशों के बारे में क्या जानता है, तो शायद वो बहुत ही कुछ बता देगा। लेकिन अगर उसे अपनी ट्राइब की कोई पुरानी कहानी या परंपरा पूछी जाए तो हो सकता है कि उसे उसके बारे में कम जानकारी हो। ये किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं है, ये एक समय के साथ आई चुनौती है। इसीलिए आज इंडिजिनियस कल्चर को बचाकर रखना पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है। दोस्तों, आइए हम जारी रखते हैं हमारा ये कार्यक्रम हेलो ईटानगर। उससे पहले लेते हैं छोटा सा गीत का ब्रेक और आप सुनेंगे जर्नी सॉन्ग फ्रॉम द मूवी पीकू।

करते हैं तो इसका मतलब किसी और कल्चर या रिलीजन के खिलाफ होना नहीं होता। भारत एक ऐसा देश है जहां अलग अलग धर्म और परंपराएं साथ साथ रहती हैं। हमें सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी पहचान को भी संभाल कर रखना चाहिए। सोचिए अगर एक दिन हमारी भाषा खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? हमारे लोक गीत कौन गाएगा? हमारे कहानियां कौन सुनाएगा? हमारे त्योहारों का असली मतलब कौन समझाएगा? इसलिए कल्चर को बचाना सिर्फ पुरानी बातों को याद रखना नहीं है, ये अपनी आइडेंटिटी को बचाना का भी एक काम है। दोनों पोलों का इंस्टीट्यूशनलाइज करने का जो ये प्रयास हुआ है उसका एक बड़ा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियां अपनी परंपरा को समझ सके और उससे जुड़े रहिए। दोस्तों, दुनिया भर में इंडिजेनस कम्युनिटी अपनी कल्चर को बचाने के लिए काम कर रही है। न्यूजीलैंड में माओरी लोग अपनी भाषा और परंपरा को बचाने की कोशिश कर रही है। ऑस्ट्रेलिया में अब ओरिजिनल कम्युनिटीज अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को मजबूत बना रही है। अमेरिका और कनाडा में भी लोग इंडिजेनस लोग अपने पारंपरिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फिर अरुणाचल के लोग अपने कल्चर को संभाल क्यों नहीं रहे? आज हमारे पास एक बहुत बड़ा मौका है। हम मॉडर्न एजुकेशन भी ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिशन को भी जिंदा रख सकते हैं। हम इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ऑफिसर बन सकते हैं और साथ ही अपने कल्चर पर गर्व भी कर सकते हैं। मॉडर्न बनना, अपनी परंपरा से जुड़ा रहना, दोनों एक साथ मुमकिन है। दोस्तों, कल्चर को बचाने का काम सिर्फ किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का नहीं है, ये उन सब की जिम्मेदारी है। अगर आप घर में अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो आप कल्चर को बचाने में योगदान दे रहे हैं। अगर आप अपने बच्चों को पारंपरिक गीत और कहानियां सिखाते हैं तो आप कल्चर को बचाने में योगदान दे रहे हैं। अगर आप त्योहारों में भाग लेते हैं और उनका महत्व समझते हैं तो आप अपने कल्चर को बचाने में योगदान दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें ही मिलकर एक बड़ी पहचान को जिंदा रखती है। दोस्तों, एक पेड़ जितना भी ऊंचा हो जाए उसकी ताकत उसकी जड़ों में होती है। उसी तरह कोई भी समझ कितना भी मॉडर्न हो जाए उसकी ताकत उसकी कल्चर और उसकी रूट्स में ही होती है। इसलिए हमें आगे बढ़ना है, दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना है, लेकिन अपने जड़ों को कभी नहीं भूलना है। दोनों पोलो और अरुणाचल की इंडिजेनस परंपराएं हमारी पहचान है। ये हमें बताती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और हमारी कहानी क्या है। आइए हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि हमारी कल्चर, हमारी भाषा, हमारा गीत और हमारे परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुंच सके। इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ आज के हेलो ईटानगर में आपसे मैं लेती हूँ आज्ञा। अपना ख्याल रखिए, अपने कल्चर पर गर्व कीजिए और हमेशा अपने जड़ों से जुड़े रहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे गीतों का सिलसिला जारी रहेगा सिर्फ कार्यक्रम हेलो ईटानगर आकाशवाणी अरुण FM पे, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz। चाह होती है दिल से दिल के बात।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
4: द मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes.
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
6: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
5: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा वैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ETF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ETF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने NEET UG पुनः परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11

0: कर 20 मिनट पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वो जेहना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। दामुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेड़के के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। वहीं श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, केरल, माहे, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर के कुछ स्थानों पर बिजली चमकने और तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Subhadra Ramachandran. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart. Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्राइम मिनिस्टर सेड बोथ द कंट्रीज हैव साइंड द लेटर ऑफ इंटेंट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस सेक्टर।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom Keir Starmer and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. Government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees to 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre.

0: A life-size statue of Swami Vivekananda was unveiled at the Consulate General of India in Chicago by India's ambassador to the U.S., Vinay Mohar Quatra. In a social media post, Mr. Quatra said he's proud to unveil a statue of Swami Vivekananda, whose timeless message of service and universal harmony lives on in all of us. Vivekananda, a prominent philosopher thinker who spread the teachings of Vedanta and yoga across the world, is best known in the U.S. for his landmark speech at the World's Parliament of Religions, held in Chicago in 1893. Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu has invited the National University of Singapore, NUS, to establish an international branch or satellite campus in Amravati to develop the capital city into a global education hub. During a meeting with NUS President Professor Tan Ying Chi in Singapore yesterday, Mr. Naidu discussed opportunities for academic collaboration, research partnerships and higher education expansion in Andhra Pradesh. The UN General Assembly, UNGA, convened its fifth interactive dialogue with a candidate for the position of next UN Secretary General. In the FIFA World Cup 2026, Iran and New Zealand draw 2-2 in their Group G match in Los Angeles in California today. Earlier, Tanika Verde makes its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चाहा होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब वक्त है हमारे अगले कार्यक्रम पे जाने का। अगला कार्यक्रम पेश है फिल्मी गपशप। दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप, मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी। फिल्मी की बातें, सितारों की खबरें, बॉलीवुड दुनिया की हर छोटी बड़ी बात लेकर हम फिर से हाजिर हैं। आज के फिल्मी गपशप में हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म के बारे में जो प्यार, फैमिली, कल्चर के खूबसूरत संगम को दिखाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म टू स्टेट्स की। दोस्तों, 2014 में रिलीज हुई ये फिल्म चेतन भगत के मशहूर नॉवल टू स्टेट्स पर आधारित है। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई है अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट ने। फिल्म की कहानी कृष और अनन्या के पास आसपास घूमती है। कृष जो पंजाबी मुंडा है और अनन्या है जो तमिलनाडु से है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है और धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब दोनों शादी करना चाहते हैं। प्यार करना आसान था, लेकिन अपने परिवार को मनाना इतना आसान नहीं था। एक तरफ पंजाबी फैमिली और दूसरी तरफ तमिल फैमिली, दोनों की सोच, खाना, रहन सहन और परंपराएं बिल्कुल अलग। फिल्म बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है कि भारत की डाइवर्सिटी कितनी सुंदर है और प्यार का रिश्ता कैसे अलग अलग कल्चर्स को जोड़ सकता है। फिल्म में कॉमेडी है, इमोशंस भी है और फिल्मी ड्रामा है। और दोस्तों, इसी फिल्म का म्यूजिक भी उतना ही खूबसूरत है जितना इसकी कहानी है। अब बात करते हैं पहले गीत इसकी उसकी। ये गाना पूरी तरह से मस्ती और सेलिब्रेशन से भरा हुआ है। इसमें पंजाबी वेडिंग का रंग और एनर्जी देखने को मिलता है। अगर आपको डांस और शादियों वाले गाना पसंद है तो गाना जरूर आपके दिल को छू जाएगा। लीजिए, पेश है इसकी उसकी।

दोस्तों स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। अब बात करते हैं फिल्म के एक और बहुत ही खास गाने की। इस गीत का नाम है मस्त मगन। ये गाना रिलीज होते ही लोगों के दिलों में बस गया था। इस गाने में प्यार की सादगी और खूबसूरत बहुत ही प्यारे अंदाज में दिखाया गया है। अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में इस आवाज ने इस गीत को और भी यादगार बना दिया है। सब कृष और अनन्या के रिश्ते का धीरे धीरे गहरा होता है, तब ये गाना उस एहसास को बहुत ही खूबसूरती से पेश करता है।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप। गपशप में फिल्म टू स्टेट्स का तीसरा और बेहद खूबसूरत गीत है चांदनिया। ये गाना इमोशन से भरा हुआ है। जब जिंदगी में उलझन होती है और रिश्तों की कसौटी होती है, तब ये गीत कहानी को एक अलग ही गहराई देती है। तो पेश है टू स्टेट्स का ये गीत चांदनिया।

0: लड़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ? अचानक क्या हुआ?
0: इट्स नॉट यू इट्स मी।
1: इट्स नॉट यू इट्स मी क्या होता है? प्लीज एक्सप्लेन।
0: रिलैक्स, हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है।

0: क्लास के बाद राम भाई चलो?
1: नहीं, मुझे पढ़ाई करनी।
2: दोनों का झगड़ा हुआ है?
1: तुम लोगों को और कोई काम नहीं?

मनाली की याद आ गई। राधिका की माँ और मेरा हनीमून वहीं पर हुआ था। माइंड ब्लोइंग। नो नो नॉट हिम नॉट हिम ओ नो दिस शिट इज गुड बट वी शुड नॉट डू इट रेगुलरली मेकी बॉय कीप ऑफ द ग्रास दिस डॉग इज टॉन्ड यार।

0: बेटा इसने ब्रेकफास्ट के 20 पाउंड दिए हैं टिप इंक्लूडेड। अगर तुम दोनों का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो मैंने इसे ऊपर वाला कमरा ऑफर कर दिया था एज ए किराएदार। हर रिश्ते में एक गलती तो माफ होनी चाहिए।
1: Can I have my 20 pounds back?

0: 90 kilometer per liter. Smart Play Studio 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
3: दोस्तों बढ़ते हैं बॉलीवुड की दुनिया की ताज़ा खबरों की तरफ। दोस्तों जून 2026 बॉलीवुड के लिए काफी बिजी महीना माना जा रहा है। इस महीने कई बड़ी फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई है और कई फिल्मों को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रहा है। ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक जून का महीना बॉलीवुड के लिए काफी कम्पिटिटिव रहा है क्योंकि कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ रिलीज हुए हैं। फिल्म दर्शकों के बीच मैं वापस आऊंगा, गवर्नर, बंदर और है जवानी तो इश्क होना है जैसे फिल्म को लेकर काफी बातें हो रही हैं। बॉलीवुड गॉसिप की दुनिया से एक दिलचस्प खबर यह है कि एक्ट्रेस शर्वरी के बारे में रिपोर्ट्स आ रही है कि वो एक नए प्रोजेक्ट के लिए कार्तिक आर्यन और डायरेक्टर लव रंजन के साथ बातचीत कर रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये बड़ी कास्टिंग खबर साबित हो सकती है। OTT प्लेटफॉर्म्स भी इस समय काफी एक्टिव है। इस हफ्ते स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर कई नए शोज और फिल्में रिलीज हो रही है, जैसे कि दृश्यम 3, ठुकरा के मेरा प्यार सीजन 2 और कई नए थ्रिलर्स और ड्रामास शोज दर्शकों का ध्यान खींच रही है। TVF की लोकप्रिय सीरीज ग्राम चिकित्सालय का दूसरा सीजन भी इस महीने में रिलीज होने जा रहा है और इसी को लेकर फैंस काफी एक्साइटमेंट में हैं। और एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि राजकुमार हिरानी के बैनर से बनी वेब सीरीज प्रीतम और पेड्रो भी काफी चर्चा में है। इस सीरीज में है अरशद वारसी और विक्रांत मासी नजर आएंगे। और दोस्तों सोशल मीडिया पर फिलहाल सबसे ज्यादा बात हो रहा है आने वाले फिल्म और उनके ट्रेलर्स को लेके। फैंस अपनी पसंदीदा स्टार्स की हर अपडेट पर नजर रखे हुए हैं और आने वाले महीनों में बॉलीवुड से और भी कई बड़े अनाउंसमेंट्स की उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों आज की फिल्मी गपशप में ये था। गॉसिप सेगमेंट से बस इतना ही। आशा है कि आपको फिल्म टू स्टेट्स का ये गीत और बॉलीवुड की ताजा खबरें काफी पसंद आई होंगी। मैं हूं आपके रेडियो साथी आरजे लूसी और आप सुन रही हैं आकाशवाणी अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म में गपशप। कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि अब भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की यह 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। यह वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सुरक्षा और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विद्यार्थियों की सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर विशेष ध्यान देते हुए इस पुनर्परीक्षा के लिए राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की। गृह सचिव ने सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुख और समृद्धि के दरवाजे धैर्य, विवेक और दूरदर्शिता से किए गए कार्यों से ही खुलते हैं। संस्कृत का श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक निर्णय में पूर्ण विवेक आवश्यक है, क्योंकि सोच समझकर उठाया गया कदम सफलता की नींव बनता है। उन्होंने कहा कि बिना विचार किए गए जल्दबाजी में कोई निर्णय या कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घोर विपत्तियां आ सकती हैं। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक निर्णय में विवेक का प्रयोग करने पर बल दिया। फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मैच में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with the leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. On the sidelines of the meeting, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada, Mark Carney, Prime Minister of United Kingdom, Keir Starmer, and UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Later, he will attend a gala dinner hosted by French President Emmanuel Macron. India and Slovakia elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas, including labour migration, digital technology and defence, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: A liquefied natural gas LNG carrier, Disha, safely transited through the Strait of Hormuz. The LNG carrier carrying 62,370 metric tons of LNG is one of the first commercial vessels to transit the strait since the announcement of a preliminary ceasefire deal between the United States and Iran. Director in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Upesh Kumar Sharma, said the vessel is expected to arrive at Dahej in Gujarat on the 18th of this month. Government has increased the special additional excise duty SAED on the export of diesel and aviation turbine fuel ATF in its latest fortnightly review. With effect from today, the export duty on diesel has been raised to 14 rupees per litre from 13 rupees 5 paise per litre, while the levy on ATF exports has been increased to 12 rupees 5 paise per litre from 9 rupees 5 paise per litre. The export duty on petrol remains unchanged at 1 rupee 5 paise per litre. Lok Sabha Speaker Om Birla will inaugurate the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi at the national level today. The Ministry of Youth Affairs and Sports said the initiative reimagines youth engagement with democratic processes, offering young citizens a hands-on understanding of governance, policy deliberation and parliamentary functioning. A B-52 bomber crashed shortly after takeoff at a U.S. Air Force base in Southern California's Mojave Desert last night, killing all 8 people aboard. Aerial footage showed a plume of black smoke rising from the desert near the runway on the base. It is not immediately clear what caused the crash. Domestic benchmark equity indices Sensex and Nifty opened higher this morning following a preliminary agreement between United States and Iran to end the West Asia conflict. Sensex rose over 315 points to touch 76,579 in early trade, while Nifty gained around 77 points to trade at 23,931. In the FIFA World Cup 2026, tiny Cape Verde makes its historic first appearance at the World Cup, produced an extraordinary performance to secure a 0-0 draw with global heavyweight Spain. Cape Verde's 40-year-old keeper, Wozinha, delivered a heroic performance. Cape Verde have produced the biggest shock of the tournament so far. And that is the end of this news bulletin.
0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब वक्त है अगला कार्यक्रम पेश करने का। अगला कार्यक्रम पेश है आप सभी का मनपसंद रेडियो ऑन डिमांड।
5: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। मैं हूं आपकी रेडियो साथी आरजे लूसी, और ये वो मंच है जहां आपकी पसंद बनती है हमारी पेशकश। आपके प्यार भरे संदेश, फरमाइशी पत्र और गीतों की पसंद ही इस कार्यक्रम को खास बनाती है। सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, जो लगातार हमें अपने संदेश और गीतों की फरमाइश भेजते रहते हैं। आपका साथ और आपका प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये यादगार गीतों का सफर। हमारी पहली फरमाइश आई है असम के कार्बी आंगलोंग जिले से, और गीत की फरमाइश की है नीलिका क्रोपी, अतुर क्रो और सार्लो क्रोजी ने, जो कि लंकासम कार्बी आंगलोंग के रहने वाले हैं। उन्होंने फरमाइश की है कि वो डफली वाले डफली बजा गीत सुनना चाहते हैं। तो नीलिका जी, अतुल ग्रोजी और सारलो ग्रोजी, ये गीत आपकी फरमाइश पर पेश है अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

स्वागत है दोस्तों आपका फिर से कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। अब वक्त है हमारी अगली फरमाइश का। ये गीत हमें सुनाना चाहते हैं असम के हमारे कोई प्यारे श्रोता। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गीत को चुनने के लिए। और इस गीत की फरमाइश आई है हमें रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लकी जी से, जो कि घोलाघाट असम के रहने वाले हैं। उन्होंने ये गीत की फरमाइश की है जिसका नाम है आजा रे, फ्रॉम द मूवी नूरी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। तो रोमेश जी, रूनू जी और लकी जी, ये गीत आपकी फरमाइश पर।

0: दोस्तों कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए सिर्फ आकाशवाणी और एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
3: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, जहां आपकी पसंद है हमारी पेशकश। अब हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक संदेश आया है जो है गुम्मे माई बागरा और उनके पति जुमकर बागरा की तरफ से। उन्होंने बताया है कि वो दोनों खेतों में काम करने जा रहे हैं और अपने काम के दौरान रेडियो में ये गीत सुनना चाहते हैं, इस गीत का आनंद लेना चाहते हैं। तो गुम्मे माई बागरा जी, आप दोनों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आशा है कि आज का दिन आपके लिए सफलता और खुशियों से भरा रहे। खेतों में मेहनत करने वाले हमें हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को भी हमारा नमन। आपकी फरमाइश पर पेश है अनुराधा पौडवाल की मधुर आवाज में एक बहुत ही खूबसूरत गीत, आई जस्ट कॉल टू से आई लव यू। तो गुम्मे माई बागरा जी और जुमकर बागरा जी के नाम सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। आगे बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। ये फरमाइश भेजी है असम के प्यारे श्रोता जॉर्ज बारला जी ने। जॉर्ज बारला जी ने कहा कि उन्हें केके का गीत बहुत पसंद है और वो केके का कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। जॉर्ज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें लिखने के लिए। केके की आवाज आज भी लाखों दिल में बसी हुई है। उनके गीत में दोस्ती प्यार और जिंदगी के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। तो हमने आपके लिए चुना है केके का पहला एल्बम पल का एक बहुत ही मशहूर और यादगार गीत जिसका नाम है यारो। ये गीत दोस्ती की खूबसूरती को बयान करता है और आज भी हर उम्र के लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। तो जॉर्ज बारला जी और असम के हमारे सभी श्रोताओं के नाम सुनिए केके की आवाज में यारो।

इस बेहतरीन गीत के बाद आइए अब हमारे पास आई है अगली फरमाइश जो कि हीगो बागरा गांव से हमारे श्रोता जुमगर बागरा जी की तरफ से। जुमगर जी ने ये गीत अपने प्रिय मित्र दुग बागरा जी को समर्पित किया है। दोस्ती का रिश्ता जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक होता है। सुख हो या दुख हो, अच्छे दोस्त हमेशा साथ खड़े रहते हैं और जिंदगी के सफर को और भी यादगार बना देते हैं। जुमगर बागरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे से इस प्यारे से संदेश और गीत की फरमाइश के लिए। हमारी तरफ से भी दुग बागरा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो लीजिए जुमकर बागरा जी की पसंद और उनके दोस्त दुग बागरा जी के नाम फिल्म साजन का घर से ये मधुर गीत अपना भी जिंदगी में सुनिए और इस खूबसूरत दोस्ती को सलाम कीजिए।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। अब बारी है और एक खूबसूरत फरमाइश की। ये गीत सुनना चाहती है हमारी नियमित और बहुत ही प्यारी श्रोता सानू प्रधान जी। सानू जी, जो कि गोपुर के रहने वाले हैं, आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसा श्रोता ही इस कार्यक्रम को असली पहचान रखता है। आप लगातार अपनी फरमाइश और संदेशों से उसके जरिए हमसे जुड़े रहते हैं और सच कहूं तो आप जैसे श्रोताओं के प्यार और सहयोग से ही कार्यक्रम जिंदा और रोचक बना रहता है। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और एक बार फिर से दिल से शुक्रिया। आपने हमेशा रेडियो ऑन डिमांड को अपना प्यार दिया। तो लीजिए, आपके फरमाइश पर ये गीत है हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म से। इस गीत का नाम है थोड़ी देर और ठहर जा। ये गीत इंतजार, उम्मीद और जज्बातों की खूबसूरती को की कहानी बयान करता है। तो लीजिए, आपकी फरमाइश पर ये गीत पेश है।

0: दोस्तों, अगर आप भी रेडियो ऑन डिमांड में अपना पसंदीदा गीत सुनना चाहते हैं या अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और अपने नाम का कोई खास गीत समर्पित करना चाहते हैं तो हमें अपनी फरमाइश जरूर भेजिए। आप अपने गीतों की फरमाइश और संदेश हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फरमाइशी नंबर है 9436887808 पर। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, 9436887808 पर। तो देर किस बात की, उठाइए फोन और भेजिए अपना पसंदीदा गीतों की फरमाइश। हो सकता है कि अगले दिन इसी कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में आपकी पसंद का कोई गीत हो और आपका नाम भी हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम में लिया जाए। हम इंतजार कर रहे हैं आपके संदेशों और फरमाइशों का। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड के साथ, सिर्फ आकाशवाणी अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जल

0: मग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास ना करें, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि।
1: दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब वक्त है एक खास फरमाइश का। ये गीत सुनना चाहती है हमारी प्यारी श्रोताओं कविता सुतार जी। कविता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें याद किया और अपनी पसंद का गीत हम तक पहुंचाया। दोस्तों, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो सीधा दिल को छू जाते हैं। उनमें जज्बात होते हैं, अपनी यादों की अपनों की याद होती है और इंतजार की वो मीठी सी खसक भी होती है जो हर किसी ने कभी न कभी महसूस तो किया ही होगा। कविता सुतार जी की पसंद है ये गीत घर कब आओगे, फ्रॉम द मूवी बॉर्डर टू। ये गीत अपनों से दूर रहने वाले भावना और घर लौटने की उम्मीद को खूबसूरती से बयान करता है। तो लीजिए, कविता जी की फरमाइश पर पेश है।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड या आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। मैं थी आपके साथ इस सफर में आरजे लूसी, और आज की पहली प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता विमल शर्मा। जाने से पहले आपको बता दूं कि हमारी दूसरी प्रसारण सभा के लिए आरजे तुनिया स्टूडियो पर पहुंच चुकी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
1: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत में श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमानन ईंधन के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में बढ़ोतरी की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं विमानन ईंधन के निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद बढ़ गई है। अमरीका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। इस बीच LNG ले जा रहे भारतीय टैंकर दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। इसमें 62,370 मीट्रिक टन LNG है। इसके 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों के भीतर ही 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। 21 जून को निर्धारित राष्ट्रीय प्रवेश और पात्रता परीक्षा नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा को देखते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस निर्णय का स्वागत किया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। फीफा विश्व कप में केप वर्डे ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए दिग्गज टीम स्पेन के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला। ग्रुप जी के पहले मैच में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहली प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे लूसी के साथ। उम्मीद करती हूँ आरजे लूसी के साथ आपका सफर बहुत ही सुहाना रहा होगा। अब इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं और शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा। और इस सफर में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी आरजे दुनिया। दोस्तों, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एल ताली तथा तकनीकी अभियंता एचएम भूषण। हर रोज की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो दोस्तों, आइए सभा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की दूसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करें आइए, उससे पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूं आज के इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे फिल्मी लहर कार्यक्रम। 11:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। 12:00 से लेकर 12:10 तक आप बारी बारी से सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार। 12:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम गजल। आज के मेहमान कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 12:30 पर। दोपहर के 1:00 से लेकर 1:10 तक आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुन पाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनाएंगे 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। एक बजकर 40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। 2:00 से लेकर 2:30 तक आप सुन पाएंगे मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3:00 आप सुन पाएंगे मिशमिकमन श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर प्रसारित होंगे बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। 3:40 पर आप सुन पाएंगे वन टू श्रोताओं का समाचार। 3:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। 4:00 आप सुन पाएंगे ईदमिशमी श्रोताओं का समाचार। 4:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। और कार्यक्रम के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

अब दोस्तों सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हर गीत एक जज्बा है, हर धुन एक एहसास है और हर बोल किसी कहानी का हिस्सा। तो आइए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं, दिल तो पागल है फिल्म से कोई लड़का है। इस गीत को अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने।

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। आइए अब कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं रईस फिल्म से जालिमा, अरिजीत सिंह और हर्षदीप कौर की आवाजों में।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म लहर यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम।
1: हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akash.
1: दोस्तों आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज, यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर

0: वियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit on the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Mr. Modi will then participate in a working session of the summit on the theme, forging new partnerships and rebuilding international solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries, and representatives of the World Bank and the African Development Bank.

गजल की सबसे खास बात यह है कि ये दिल की उन बातों को भी बयां कर देती है जो अक्सर हम अल्फाज़ों में नहीं कह पाते। नर्म सुर, गहरी सैयारी और दिल को सुकून देने वाली आवाज के साथ गजल हर दौर में लोगों के दिल के करीब रही है, और जब एक खूबसूरत गजल महफिल सजती है तो लगता है जैसे वक्त भी थोड़ी देर के लिए थम सा गया हो। और आज के गजलों की इस खास महफिल में पहला पेशकश है आज बिछड़े हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में।

नगमों की नरम छाव, अल्फाजों की मिठास और एहसासों की गहराई लिए आप बने हुए हमारे साथ गजलों की इस खास महफिल में, जहां हर गजल दिल की किसी अनकही बात को आवाज देती है। और अगला गजल आप सुन पाएंगे हरिहरन की आवाज में, यूं ही बेसबब ना फिरा करो।

दोस्तों, गजलों की महफिल से आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप सुन पाएंगे कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे एक वेद वार्ता। वेद कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर तालो एंटनी और साक्षात करता है गोपाल राय।

0: जब हम वनों और वन्य जीवन में आपकी रुचि कैसे जगे? What stirred your interest in forest and wildlife?
1: एक्चुअली ऐसे था कि मुझे फॉरेस्ट या फिर वाइल्ड लाइफ के ऊपर में ही इंटरेस्ट ऐसा नहीं था। स्टार्टिंग में जब हम स्कूल लाइफ में थे तब हमारा वो रील वाला कैमरा आता था,
0: जी
1: तो वो लोग हाइकिंग पिकनिक वगैरह में सब ये लेना है वो लेना है, मेरा था कि मैं कैमरा लेके जाना है। तो कैमरा लेके फिर जितना दोस्तों है उनसे 25-25 रुपीज या 50 रुपीज कलेक्ट करके हम एक रोल खरीदते थे, जिसको डाल के हम अपना अपना डिवाइड होता था। जैसे 5 लोग है तो आपका 5, मेरा 5, वो 5, तो वो चल रहा था, साथ से चल रहा था हमारा। वो ऐसे ही मैं फोटो खींचता था, फिर बाद में डेवलप करता था, ये सब इंटरेस्ट था। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इतना सीरियस है इंटरेस्ट है। तो बाद में फिर ये मोबाइल का जमाना आ गया, फिर मोबाइल से मैं क्लिक करना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही करके 2011 में जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर काम कर रहा था, तो हमारे वहाँ पे एक चिल्ड्रन का वो रहता है कंजर्वेशन, एक कैंप रहता है जो कि आपका वाइल्ड लाइफ वीक के महीने में ही रहता है। तो हम आसपास के स्कूल स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पे बाहर से रिसोर्स पर्सन लेकर आके वहाँ पे उनका 3 दिन का कैंप होता था। तो उसपे मैं, जो हमारा मिलोता सर सर था, उन्होंने मुझे लेके गया वहाँ पे, चलो जा रहे थे। मैं वहाँ पे गया, जाने के बाद देखा तो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है और फोटो खींचना तो आदत है ये, तो ऐसे करके मैं एक दो फोटो लेना स्टार्ट कर दिया। तो तसर सर देखा कि वो इंटरेस्ट है मैं फोटो तो खींचने में, तो बाकी जब कुछ कैलेंडर के लिए हो या फिर कुछ भी हमारा इवेंट का कहीं तो फोटो चाहिए तो वो मुझे ही मांगते थे। ऐसे कर करके फिर बाद में एक कैमरा मिला, फिर कैमरा से मैंने स्टार्ट कर दिया। बाद में धीरे धीरे जाके जब स्टूडेंट्स के साथ में बैठा, जब रिसोर्स पर्सन ने बताया कि ये वाइल्ड लाइफ या फिर जो हमारा फॉरेस्ट है कितना इम्पोर्टेंट है, वहां से जाके शायद मेरा इंटरेस्ट जो है बहुत बढ़ गया।
0: जब हम तालो एंथनी की बात करते हैं, तालो एंथनी और ग्रीन हब एक दूसरे से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हैं, तो आप कैसे इस ग्रीन हब से एसोसिएट हुए?
1: ग्रीन हब अगर बोले जाए तो वो मेरे लिए दूसरा जन्म होगा, क्योंकि जैसे कहानी बहुत फिल्मी है लगता है मुझे। मैं जब छोटा था तब मेरे पापा का देहांत हो गया, इसके बाद मैं घर का मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मेरा मम्मी भी जो है वो भी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो कंटीजेंसी है, हम 4 बच्चे हैं तो घर का सबसे मैं बड़ा होने के नाते मुझे भी काम करने पड़ गया। तो उस हिसाब से क्या हो गया कि मेरा जो इंटरेस्ट था कैमरा के ऊपर में, और नेट जो वो देखता था मैं, कि मैन वर्सेस वाइल्ड देखता था, डिस्कवरी चैनल देखता था, तो मैन वर्सेस वाइल्ड जैसे बनना है मुझे, जाना है इधर उधर करना है, मजा आएगा ये सोचता था। लेकिन वही मिडिल क्लास फैमिली वाला कहानी जैसा मेरा वो जो कहानी था वो भी सपना था, अधूरा रह गया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बाहर जाके कहीं सीख पाऊं, और अरुणाचल में ऐसा कुछ नहीं था कि जहाँ पे सामने है मैं जाके वहां पे सीखूं, ये भी नहीं था। तो जब मैं ये फोर्स डिपार्टमेंट काम कर रहा था, तसर सर ने देखा मेरा काम, तो मिलो तसर सर डीएफओ हमारे, उन्होंने एक बार मुझे मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि एंथनी ऐसे से है, एक ग्रीन हब करके फॉर्म निकला है और एडमिशन के लिए चल रहा है और वो फोटोग्राफी सिखा रहे, तुम इंटरेस्टेड है क्या? मैं बोला सर मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो ऐसे करके सारा फॉर्म वॉर्म फिल किया, उनको दिया, इंटरव्यू हुआ। तो वहां पे जब गया तो देखा बहुत सारे लोग भी आए हैं, इवन जब हम गए थे हम तो फर्स्ट बेच के थे उसमें
0: जी
1: बाहर से, लेकिन बहुत सारे लोग गए थे जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश थे, कोई तो बहुत सारा मैगजीन के साथ काम कर रहे हैं कोई, और मैं उस समय में डीएसएलआर कैमरा कभी देखा भी नहीं था, मतलब कि टच नहीं किया था, दूर से देख रहा था टच नहीं किया था। मेरे पास तो छोटा सा ब्रिज कैमरा था, पॉइंट एंड शूट कैमरा, उसी से कर रहा था, वो भी लेके गया था मैं इंटरव्यू के समय में, लेकिन उनका बात सुन के मैं उसको बैग से निकाला ही नहीं। तो
0: जी
1: मुझे लगा कि ये तो मिलने वाला नहीं है, मैं गलत जगह आ गया, लेकिन लकीली पता नहीं उन्होंने कुछ तो देखा मेरे अंदर में, तो लकीली मुझे वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से जो मुझे ट्रेनिंग मिला वो प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिला मुझे कि सच में फिल्म मेकिंग होता क्या है, वहां से मैं सीखकर अभी और उसी लाइन पे मैं अभी चल रहा हूँ।
0: जी इसके बाद आपने जो जो फिल्में बनाई, किस तरह की फिल्में बनाई, बहुत सारे फिल्मों को तो अवार्ड्स भी मिले हैं, उसके बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं।
1: तो ग्रीन अप के समय में हमारा जैसे एक साल रहता है ग्रीन अप का प्रोग्राम रहता है, उस पे हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और वो जो हमारा नेचर कैंप था जो हम 2011 से चल रहे हो, तो 2015 में उन्होंने तसर सर ने बुलाया कि इस बार भी हो रहा है तुम आ जाओ। तो लास्ट टाइम जितना भी गया था मैं उसमें तो हमारा ऐसा था कि मैं उनके साथ जाता था फोटो खींचने, लेकिन इस बार मुझे इनवाइट किया ऐसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर इवेंट को
0: जी
1: कवर करने के लिए,
0: जी
1: तो मैं बहुत खुश था कि जाना है, क्योंकि मैं आ गया, आने के बाद मैं उनके साथ में रहा। हालांकि जितना हमारा रिसर्च पर्सन था सब हम अच्छे दोस्त हैं, जान पहचान है, तो फिर वो करे तो पहले तो मैं फोटो शूट लेता था अभी, लेकिन मैं वीडियो में ट्रेंड हो गया था, एडिट सीख गया था मैं, तो उस हिसाब से मैं उनको दिखाना चाह रहा था कि ये एक्चुअल में प्रोग्राम होता कैसे, क्योंकि मेरा मानना है कि अभी ये जमाना आ गया कि बोलना कम करना चाहिए, दिखाना ज्यादा चाहिए हमें। तो इस हिसाब से मैंने उनको एक छोटा सा 10 to 15 मिनट्स का एक छोटा वीडियो बनाया, उसको जाके एडिट किया, एडिट करने के बाद में दिखाया, तो उनको बहुत ही अच्छा लगा जो ग्रीन हब के लोग थे, इवन जो हमारे रिसोर्स पर्सन था सर, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो वो फिल्म को लेकर हमारा रीता बैनर्जी जो डायरेक्टर ग्रीन हब के, उन्होंने कोई तो फिल्म फेस्टिवल में

0: सबमिट कर दिया। तो एक दिन मुझे कॉल आता है कि बताते है कि वहां पे एक तुम्हारा फिल्म को भेजा था, वो सिलेक्ट हो गया, तुमको दिल्ली जाना है। तो बाद में पता चला कि वो वुड पिकर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था, तो उसमें 94 कंट्रीज से फिल्म आए थे और बहुत सारा फिल्म था। तो मेरे को लगा कि ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं जाऊँ, सीखूँ, देखूँ कि उनका भी फिल्म कैसा होता है क्या। तो मैं चला गया दिल्ली, तो मैं अपना फ्रेंड को भी लेके गया, वहाँ पे बैठा। बैठने के बाद में जैसे मैं आपको बता रहा था कि बैठने के बाद में वो फिल्म फेस्टिवल सारा फिल्म देखा, फिर बाद में उन्होंने बताया था कि शाम को अवार्ड ये सेरेमनी है, आपको सब आ जाना, वहाँ पे डिनर वगैरह होगा। तो मैं दोस्त को बोला कि देखो कुछ मिलने वाला तो है नहीं, फिल्म अच्छा से देखिए, अच्छा खाना मिलेगा, खाते हैं वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या हुआ पता नहीं, इतना अचानक से मेरा नाम लिया गया यंग अचीवर अवार्ड के लिए, क्योंकि उन्होंने फिल्म तो सारा का देख लिया था और हमारा तो फर्स्ट फिल्म था, पहला फिल्म था। तो शायद उनको इंटरेस्टिंग लगा, मेरा टेक्निक इंटरेस्टिंग लगा या फिर वो स्टोरी इंटरेस्टिंग लगा, कुछ तो लगा उनको कि यंग अचीवर अवार्ड दे दिया। तो वहां से वो जर्नी मेरा फिर स्टार्ट हो गया।
1: तो जब अचानक से आपका नाम अनाउंस हुआ कि आपके जो फिल्म है उसको अवार्ड मिलने वाला है, तो वो उस वक्त का जो रिएक्शन था, आपका जो फीलिंग्स था, इमोशन था, किस तरह के था?
0: उस समय मैं एक्चुअली वो रात तो मुझे कुछ समझ भी नहीं आया क्या हुआ क्या एक्चुअली।
1: जी
0: तो वहां से हम वापस भी आ गए फिर बेटा। तो लेकिन वो जो मेरा फ्रेंड था उन्होंने पहले ही मैसेज कर दिया ग्रुप में कि जो हमारा ग्रीन अप का ग्रुप है वो रोजिता मैम को कर दिया कि अवार्ड मिल गया है। वहां से वो बहुत खुश, और मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता क्या है। तो जाके मैं सो गया। नेक्स्ट डे जब घूम रहे थे ऐसे हुआ था कि मैं अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी को बताया कि मम्मी एक फिल्म फेस्टिवल जब आया था हम यहाँ पे वो अवार्ड जीत लिया। तो बोला कि अच्छा अच्छा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है करके रख दिया। इसके बाद में 3 दिन के बाद मैं वापस तेजपुर आ गया था दिल्ली से। इसके बाद फोन आया कि अचानक से मम्मी का, मैं हेलो बोला तो तुमको अवार्ड मिला है? हाँ अवार्ड मिला, इतने लोग के सामने। हाँ तो तुम टी शर्ट पहन के क्यों गए? शर्ट पहन के जाना था। मतलब कि उस समय मम्मी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अवार्ड मतलब इतना बड़ा है ये करके ना। तो वही रिएक्शन मेरा भी था कि मिल तो गया है लेकिन ये कैसे मिल गया बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर वो तस्सल सर को जब भेजा उन्होंने फिर वो उसको एक छोटा सा आर्टिकल में डाल दिया न्यूज़पेपर में कि हमारा लड़का को ये मिला है, इसको तो देना ही करके। इसके बाद में पता चला कि सच में अवार्ड कितना बड़ा है, तब मुझे रियलाइज हुआ, तब लोग मेरे नाम को थोड़ा जानना शुरू हो गया, तालो एंथोनी करके कोई तो है करके। तो वो एक मतलब कि वो एक फील था जो आपको वो चेंज कर दिया था
1: जी,
0: पूरा।
1: तालो एंथोनी एक कंटेंट क्रिएटर है और ज्यादातर लोग वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के तौर पर जानते हैं। व्हेन यू आर शूटिंग एट जंगल या इन टू द जंगल या इन टू द वुड, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या ख्याल आते हैं?
0: यही कि जहां बैठने वाला हूं वहां सांप तो नहीं है।
1: जी
0: तो यही रहता है हमारा माइंड में सब। जैसे कि हम कोई किसी स्पीसीज के ऊपर में शूट करने जा रहे हैं तो हम रैंडमली नहीं जाते हैं, उससे पहले जो रिसर्चर हैं, जो साइंटिस्ट है उस स्पीसीज के ऊपर काम कर चुका है, उनको हम कॉन्टेक्ट करते हैं, बात करते हैं, या फिर इंटरनेट से हम कुछ ढूंढते हैं उसके बारे में कि कैसा है
1: जी
0: कौन से। क्योंकि कोई बर्ड होता है वो आपका मॉर्निंग में मिलेगा, कोई बर्ड होता है वो आपका कभी दिन में आ जाए, और उनका खाना देना होता है जो नेस्टिंग नेस्ट में देना होता है उनका अलग होता है, किसी का नेस्टिंग अलग होता है। तो उसको पहले आपको समझना होता है
1: जी
0: कि एक्चुअल में क्या है, अदरवाइज अब साल भर वहीं पे जंगल में रह जाओगे लेकिन आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो इसलिए जाने से पहले आपको होमवर्क करना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: पहले होमवर्क कीजिए फिर जाके आप जो जगह लगता है कि आपको ये सही है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन एक डिस्टेंस बनाए रखना है। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ पे एनिमल से एकदम सामने उसके आगे, वो भी नहीं होगा क्योंकि वो उसके लिए भी थ्रेट है और हमारे लिए भी थ्रेट है ना।
1: जी
0: खतरा है कि जब भी आप किसी को भी कुछ लगता है कि वो थ्रेट है तो घर की बिल्ली भी हमला कर देता है आपके ऊपर, तो
1: जी
0: वो तो फिर वाइल्ड है, तो बहुत ही
1: जी
0: मुश्किल होता है। इसलिए एक मिनिमम डिस्टेंस एक बनाए रखते हैं अच्छे से हम, फिर अपना हाइट जो हॉबी होता है उसको बनाते हैं, उसमें सारा इक्विपमेंट सामने रख देते हैं ताकि फिर ज्यादा हिलना ना पड़े। इसके बाद में वहां पे बैठ के उनका इंतजार करते हैं।
1: कुछ ऐसा इंसिडेंट्स हुआ या तो कुछ एक्सीडेंट्स हुआ जब आप शूट कर रहे हो, कुछ हुआ हो जिसे आप डर गए या तो बहुत ही एक्साइटिंग था?
0: मुझे याद है मैं काजीरंगा में हम शूट कर रहे थे, असम में बहुत काम किया मैं, जितना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर हमारे नेशनल पार्क के उन सब में ऑलमोस्ट तो मैं काम कर चुका हूँ। तो एक बार काजीरंगा में हमने शूट करने का जब शाम को वापस जा रहे थे तो हमारा ये जो महिंद्रा का कैंपर होता है तो अंदर में वो सारे रिसर्चर ये सब बैठे हुए थे, मैं बाहर में बैठा था कि कुछ दिख जाएगा तो मैं खींचा, ट्राइपॉड लगा के मैं आराम से जा रहा था, दूर से दिखे लेपर्ड दिखा मैं रास्ता में। तो मैंने उनको रुकाया फिर हमने अच्छा से वहां से वीडियो लिया, तो वो धीरे धीरे करके जंगल के अंदर चला गया। तो मैं बोला कि वो अंदर चला गया तो पास जाके लेते हैं आके। तो हम वो धीरे धीरे गए, देखा तो नहीं दिख रहा था, उनको भी लगा कि दिखा ही नहीं, हो गया खत्म। तो हम चले गए, जाने के बाद में सामने पहुंच गया, मैं आगे वो रुक गया गाड़ी वहां पे। तो मैं देख रहा था यहाँ पे है क्या आसपास में, लेकिन नजर नहीं आया, मैं जैसे पीछे मुड़ा मेरे सामने में था वो, मैं
1: जी
0: देख रहा था सामने कि वो इतना पास में था कि वो एक बार जंप कर जाए तो आराम से मेरे पास पहुंचे। तो मेरे दिल में सिर्फ यही था कि आज तो मैं जाने खत्म होने वाला हूँ, और मेरे पास वो पतला सा ट्राइपॉड था, मैं उसी का सहारा था, अगर ये आ गया तो मैं इसको सिर्फ ऐसे अपने उसके तरफ कर सकता हूँ जिससे मैं बच सकता हूँ करके, वो था। लेकिन वो भी शायद उसको भी लगा कि ट्रेन

0: नहीं, फिर वो धीरे धीरे करके अपने आप चले गए जंगल में। तो
1: जी
0: वो एक दिन था जो अभी तक याद है, जब याद आता है तो पूरा गूस बम्स निकलता है। अगर वो जंप मारता था क्या होता था
1: तो
0: मेरा।
1: जैसे अभी आपने कहा कि ग्रीन हब ने दूसरा जन्म दिया, हम कह सकते हैं तीसरा जन्म है।
0: तीसरा जन्म
1: तो
0: दीजिए।
1: जब पर्टिकुलरली हम वाइल्ड लाइफ शूटिंग की बात करते हैं, तो इसमें जो चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं वो क्या है आपके हिसाब से?
0: 2019 में जब मैं एक सीरीज कर रहा था, तब तो उसी सीरीज में हमारा एक हॉर्नबिल के ऊपर भी था। हॉर्नबिल के ऊपर मैं पाके टाइगर रिजर्व के अंदर में गया था। तो वहां पे हमें रिसर्चर बता दिया था कि वो पेड़ रहता है, उसके अंदर में रहता है ना, फीमेल अंदर में है, तो बाहर से उसको मेल पूरा बंद कर देते हैं, फिर वो ही पूरा दाना लेके उनको खिलाते हैं। तो 45 डेज के बाद में वो क्या होता है कि फीमेल निकल जाते हैं। तो फीमेल निकलने के बाद में 10-12 दिन में वो उसका जो बच्चा है वो भी निकल जाएगा बाहर। तो फीमेल निकल गया, हमें फोन आया फीमेल निकल गया, अभी तो बच्चा निकलने वाला है। और हमें वो सोच चाहिए था क्योंकि हम हॉर्नबिल के ऊपर सीरीज बना रहा था, सारा कुछ मिल गया। अभी हमें सिर्फ ये सोच चाहिए था कि उसका बच्चा निकल के उड़ गए वहां से। तो मैं गया वहां पे, मैं होम स्टे में बैठा, तो एवरी मॉर्निंग मैं 5 बजे सारा सामान पैक करके ड्राइवर के साथ में जाता था एक गार्ड को लेकर। तो ड्राइवर वापस जाते थे गार्ड, और मैं दिन भर सुबह 5 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक वहीं पे बैठे थे एक जगह में, क्योंकि वो उसका नेस्ट था, मुझे पता था, और वहां पे हमने बना के बैठा। एवरी डे मैं शूट करता था। शूट करने के बाद में मुझे लास्ट में एक शॉट मिला जो वहां से वो निकल के उड़ते हुए, और वो 5 सेकेंड्स का शॉट था। वो 5 सेकेंड का शॉट के लिए मुझे 12 डेज रुकना पड़ा सेम स्पॉट में। एवरी डे सुबह 5 बजे जाओ, शाम को 3 बजे वापस जाओ, लेकिन एवरी डे रुकना पड़ा। उसके बाद में ही मुझे वो 5 सेकेंड का शॉट मिला।
1: तो इस तरह के जो चैलेंजेस इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बावजूद आपने जो भी फिल्म्स रिकॉर्ड किए हैं या फिल्म्स जो आपके पास होते हैं उसको देखना हो, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको कहाँ देखें?
0: मोस्टली हमारा काम क्या होता है कि अभी जैसे हम इतना एस्टेब्लिश नहीं है, तो हम खुद फिल्म बना के अपने यूट्यूब चैनल या फिर वेबसाइट में हम नहीं डालते हैं। हम जब भी काम करते हैं क्लाइंट के लिए काम करते हैं, तो जब क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो आप काम करने के बाद में जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है वो उनको ही देते हैं, और
1: जी
0: सारा राइट्स उनके पास में होता है। तो इस हिसाब से अभी कुछ कुछ काम तो मैं अपना यूट्यूब चैनल में डाल रखा है, फिर बाकी का जो है वो लास्ट टाइम नेट जियो में भी एड हुआ था, उसके बाद में जाके अभी ये हॉटस्टार डिज्नी हॉटस्टार जो है उसमें भी वो हमारा 10 सीरीज है, जो सच में इंटरेस्टेड है वहां पे देख सकते हैं।
1: लेकिन उनको पे करना होगा।
0: हाँ, वो एक प्रीमियम पे करना, शायद 499 समथिंग कुछ तो है, वो तो पे करना होता है उसी साल, क्योंकि जब आप फिल्म बनाते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रहता है, तो इक्विपमेंट्स हो गया ये वो, और वाइल्ड लाइफ मतलब मेरा मानना है कि सबसे एक्सपेंसिव प्रोफेशन है जहाँ पे आप करना होता है। क्योंकि आप जैसे एक शॉट के लिए 5 सेकंड शॉट के लिए मुझे 12 दिन रुकना पड़ा, 12 दिन का होम स्टे का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, मेरा अपना खर्चा, वो कैमरा का जो हम रेंट पे ले गए उसका खर्चा, तो उतना खर्चा रह जाता है, लेकिन वहां में सिर्फ 5 सेकंड का शॉट मिलता है। तो उसको रिकवर करने के लिए कुछ तो करना होता है, तो वो चैनल को बेचते हैं, या फिर जैसे हॉटस्टार हो गया या फिर अमेजन प्राइम हो गया, उनको बेचते हैं, देखते हैं, अगर उनको पसंद आ गया तो डाल देते हैं, तो उसमें से कुछ जो भी रेवेन्यू होता है फिर उससे आगे जाके वो दूसरी फिल्म बनाते हैं।
1: हमें सुनने में आया कि आपने जो बुबिन कम्युनिटी वहां पे पाए जाने लगे कुछ बर्ड्स के ऊपर भी काम किया है जो बहुत ही पॉपुलर हुआ।
0: जो जेनेसिस 4 हमारा जो फॉर्म हुआ था उसका भी यही मकसद था कि हमको एक फिल्म बनाना है, और ये फिल्म हम जो बुगुन रियो चिचला करके एक बर्ड है उसके ऊपर मैं बनाना था, क्योंकि मैं जैसे मैं ईगलनेस में बहुत काम कर चुका हूँ तो उसके बारे में पता था। ये बुगुन रियो चिचला जो एक ऐसा बर्ड है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद में ये एक लौता बर्ड था जो नया से डिस्कवर हुआ, क्योंकि उससे पहले जितना भी हमारे ब्रिटिश थे वो आके बर्ड वॉचिंग करके पूरा सारा नाम लिख रहा है, सबका नाम है, लेकिन ये एक नया बर्ड था इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड के लिए जो नया डिस्कवर हुआ। और ये इतना कम है इनकम संख्या कि हम कह सकते हैं शायद 20 या फिर 25 भी पीस है पूरा दुनिया में, और
1: जी
0: वो ईगलनेस के अराउंड ही मिलता है। तो उसके ऊपर में क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हैं तो आपको एक बर्ड को लेके कैप्टिव में रखना होता है, मतलब कि उसको वो तो मर जाते हैं, फिर उसको सैंपल को रखना होता है ना, लेकिन ये इतना रेयर था कि उसको भी बैन कर दिया इसके ऊपर में, कि आप उसके ऊपर में रिसर्च ऐसे नहीं कर सकते, उसको आप रख सकते हैं करके। तो इसलिए हमको ये इंटरेस्ट था कि इसके ऊपर फिल्म बनाना है, और ये बुगुन भी इतना कम था, छोटा था बुगुन ये चिचला, और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट भी था, इसलिए हमने इसको पकड़ के उसके ऊपर फिल्म बनाया।
1: जी तो आपने बहुत सारे एनिमल या फौना एंड फ्लोरा की बात करते हैं, तो बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा को शूट किया है, रिकॉर्ड किया है, सिर्फ इस पे फिल्म बनाई। तो जब हम अरुणाचल प्रदेश के फौना एंड फ्लोरा की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
0: अरुणाचल पूरे दुनिया में भी, और अरुणाचल में भी इतना शायद हम अभी तक 40-30% ही अभी तक हम डिस्कवर कर पाए हैं, मतलब और 70% हमारा और है जिसको हम डिस्कवर ही नहीं किया। क्योंकि हमको लगता है कि कुछ भी चीज देखो ना, अरे ये तो हम बचपन से देखते आ रहे थे, हमें कुछ खास तो लगता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट डे पता चलता है न्यूज पेपर में ये तो नया स्पीसीज आ गया है। तो ऐसे ही एक फिश हो गया जो हम बचपन से खा रहे थे, ये तो ऐसे ही नॉर्मली खा रहे हैं, हाथ से पकड़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे पता चल रहा है कि ये तो नया स्पीसीज है, डिस्कवर हुआ है, ऐसे नया कीड़ा डिस्कवर हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ एवरी डे अरुणाचल से डिस्कवर हो रहा है। बटरफ्लाई हो गया, मॉथ्स हो गया, और फिर जो एक दो लेजर्ट है वो 100 साल पहले दिखता था वो, लेकिन अभी फिर वापस से रीडिस्कवर हो रहा है। तो ये सब हो रहा है अरुणाचल में, और इतना सारा कुछ है ना कि हमको लगता है कि अभी तक 30-40% ही सिर्फ डिस्कवर हुआ है।
1: जी, जब टूरिज्म की बात करते हैं तो आपने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी बहुत सारे टूरिज्म प्रमोशन के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए। पर्सनली आपको पूछा जाए कि आप अरुणाचल प्रदेश के बारे में या अरुणाचल टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लेस को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे?
0: ये तो बहुत मुश्किल है ये बहुत मुश्किल है एक जगह चुनना, क्योंकि सभी अभी तक मैं जितना जगह घुमा हूँ और फिल्म बनाया शूट किया उनके, हर एक जगह का अपनी एक खासियत है। अभी जैसे आपको स्नोफॉल देखना है आप तवांग चले जाओ, लेक देखना है तवांग चले जाओ, क्योंकि वो एक्सेसिबल है, गाड़ी से उतरते ही आपको दिख जाएगा ये। लेकिन आपको हार्ड कोर ट्रैक करना है आप अनी नहीं चला जाओ, मस्त जगह है, बढ़िया है एकदम, और इतना सुंदर है। 2-3 दिन आप ट्रैक करने के बाद जब वो जगह पहुंचते हो तो आपका थकान मतलब पूरा गायब हो जाता है ऐसे है। लेकिन आप फिर वाइल्ड लाइफ के लिए जाओगे तो आप ईगल नेस्ट चले जाओ, पाके चले जाओ वहां पे आपको, या नामदफा चले जाओ वहां पे आपको वाइल्ड लाइफ मिलेगा, तो उस हिसाब से अलग अलग है। फिर आप कल्चर देखना चाहते हैं तो बास्कोन बासर हो गया या फिर जीरो हो गया, अलग अलग जगह आप जा सकते हैं, उसी हिसाब से जाते हैं।
1: जी, तो आपने कहा कि जब हम अरुणाचल टूरिज्म की बात करते हैं तो एक प्लेस को चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर एक प्लेस की अपनी अपनी खासियत है। बात करते हैं जीरो की, क्योंकि आप पर्टिकुलरली आप जीरो से हो। जब हम जीरो की बात करते हैं तो जीरो भी टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही पॉपुलर है। तो
0: दूसरा है हमारा जो पेडीफ्यूल है वो जीरो का बहुत सुंदर था, मेन रोड बीच में है, साथ साथ में पूरा खेती है, बस सुंदर से देख के जाओ। लेकिन अभी समय के साथ में वो चेंज हो रहा है, जैसे हमारे जो टैटू कल्चर वाला है वो शायद अभी लास्ट जनरेशन है हमारे जितना भी पूरी महान लोग है वो लोग, अगर ये खत्म हो गए तो उसके बाद में तो और कहीं आपको देखने को मिलेगा, वो सिर्फ फोटो में या फिर वीडियो में रह जाएगा। और वैसे ही हमारा पॉपुलेशन जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से हमको एक्सपेंड भी होना सब, और वो धीरे धीरे करके अपने जो खेती है वहां पे घर बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो खेती कर नहीं रहे, क्योंकि सब अभी कोई तो गवर्नमेंट जॉब करे कोई बिजनेस करे तो सब बाहर में है, उनको इतना हार्ड वर्क करना नहीं है, और धीरे धीरे वो पानी भी कम हो रहा है, उस हिसाब से जाके उस पर घर बनाना स्टार्ट करें। तो अभी से लेके 10 या फिर 15 इयर्स पकड़ लीजिए, जीरो में ना ही आपको वो टैटू वाला कल्चर मिलेगा, नहीं वो खेती ही मिलेगा जिसके लिए आप जाते थे। तो अभी हमारा बच गया है वाइल्ड लाइफ, अगर आप वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करते हो अभी से तो वही टूरिस्ट फ्लो आएगा, लेकिन आपका वो जो वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आएगा।
1: तो आपने तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की बात की है, साथ ही हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को डॉक्यूमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया है, जैसे अरुणाचल प्रदेश के कल्चर हुआ, टूरिज्म हुआ, ट्रेडिशन हुआ और क्लाइमेट कंडीशन हुआ, उससे डॉक्यूमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट हो गया है।
0: अभी जब हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, जब उनके साथ में जाते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो उनसे पता चलता है कि कुछ कुछ स्टोरीज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत यूनिक है। सबका अपना अपना स्टोरीज होता है, ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है, लेकिन वो ना ही आजकल किसी को बता पा रहे हैं, क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, मोबाइल नहीं था, तो हम शाम को जाके अपना दादा दादी के साथ बैठते थे, वो अपना कहानी शेयर करते थे हमारे साथ, वो ही जाके फिर दूसरों को शेयर करते थे। लेकिन अभी वो समय चला गया, आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हो वहां पे आप मोबाइल कर रहे हो, दादा दादी के साथ बैठे हो वहां पे मोबाइल कर रहे हो, तो उनको बात करने का टाइम नहीं आपके पास में। वो जो हमारे जो फोक टेल्स थे या फिर जो भी कहानी हमारे था वो धीरे धीरे अभी खत्म हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज को अगर हम अभी कर सकें, जो कोई भी डॉक्यूमेंट्री बना रहे, जो फिल्म बना रहे, इवन ये म्यूजिक वीडियो बना रहे हो, आप उसी के हिसाब से जाके एग्जैक्टली नहीं फिर भी उसको कुछ रिजेंबल करके आप एक स्टोरी बनाइए, उसके ऊपर में आप शूट कीजिए, ताकि कम से कम ये आर्काइव तो रह जाएगा कि बाद में जाके 100 साल बाद, या फिर 100 साल भी नहीं चाहिए, अभी वो 25-20 साल में ये सब सारा खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कम से कम देख सके कि अच्छा हमारा ऐसे होता था, ये होता था, अभी जो हमारा ट्रेडिशनल घर बनता था वो सारा भी चेंज हो गया, पक्का घर बनना स्टार्ट हो गया, इवन बस्ती में जो घर होता था वो भी चेंज हो गया। तो इस हिसाब से ये चेंज होते रहे तो बाद में आपको पता नहीं चलेगा कि आपका ओरिजिनल घर दिखता कैसे था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि जितना हमारा कल्चर है या फिर कुछ भी ये स्टोरीज वगैरह, इनको हमको प्रिजर्व करना है, जो कैमरे से है, जो साउंड से, उनको पूरा कैप्चर करके अभी रखना है।
1: जब आप पास्ट को याद करते हो, आपको पूछा जाए कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर एक वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर के बारे में कुछ ब्रीफ में बताना हो तो क्या बताएंगे आप?
0: ये जो नाम है या फिर मैं शायद आज यहाँ पे बैठा हूँ, तो ये ऐसा नहीं है कि चुटकी बजा के मैं यहाँ पे आ गया, मैंने भी बहुत पापर बहे हैं यहाँ पहुँचने के लिए, तो बहुत ही मेहनत किया है। तो हमारा जो काम होता है, हम काम को ध्यान देते हैं, ना कि ये ध्यान देते कि लोग क्या कहेंगे, तो हम अपने काम में ध्यान देते हैं और लो प्रोफाइल रहने का कोशिश करते हैं। जब काम करने की बात हो तो जब हमने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर ऑपरेटर था, वहां से काम करने का जब काम कर रहा था वहां पे, तो दिन जब काम खत्म होने का जो कुछ समय मिलता था, उस समय में जो इंटरनेट था वो 1 GB मिलता था हमारा ये 30 डेज के लिए, तो उसको तो हम यूट्यूब कभी खोल ही नहीं सकते थे।

0: इसलिए हम जाके जब ऑफिस में रहते थे, जब सारा काम खत्म हो गया, जब थोड़ा टाइम मिलता था उससे यूट्यूब से सीखिए सब काम करते थे। और उसके बाद वहां से वापस आने के बाद में घर में मेरा एक कंप्यूटर, पुराना कंप्यूटर था जो 2 GB का था, उसमें मैं वीडियो एडिट करता था। उस पर एडिट करने के बाद में भी 3 दिन 4 दिन में पूरा एडिट करके, क्यों रेंडर में बहुत टाइम लगता है ना, तो काम करने के बाद मैं उसको रख देता था रेंडरिंग के लिए। रेंडरिंग भी आपका 2-3 घंटा लग जाएगा, तो उसको लिए वेट करते रहिए करते रहिए। और जब 98% 99% हो गया ना, आप जानते ही हो अरुणाचल का लाइफ को, तो वो चला गया अभी। फिर वेट करो वापस से, फिर वो प्रोसेस शुरू करो, फिर लगाओ। तो लेकिन उसमें मैं कभी हार नहीं माना कि अगर मुझे 10 वाले करना पड़े तो मैं करूँ करके, जो वो निकाल कर आया ना शायद, तो वो जो छोटा छोटा चीज है जो हार नहीं मानना, वो ही मुझे यहाँ तक लेकर आया मुझे।
1: तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे?
0: अरुणाचल में वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर और भी बहुत सारे हैं, जो हमारे बेच से था अनुकमेगा, वो रोइंग से है। फिर अभी सेलिना फिनिया जो ईगलनेस से, वो एक लेडी है, वो भी निकल कर आ रहे हैं। शीतल डाको वो पाकी के संग से है, वो अभी पाकी टाइगर रिजर्व में काम कर रहे हैं। फिर हमारा मिलो ताको हो गया, फिर खांडू थंगन, डिपेन, तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे जो फेलो से, ग्रीन अप से निकल कर आए हैं, वो लोग वाइल्ड लाइफ के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो अभी जितना मैंने नाम लिया वो मोस्टली अभी हम सब साथ में मिलकर काम करते हैं, कि अभी कभी यहाँ पे कुछ काम हुआ, वहाँ पे काम हुआ, तो मैं एक आदमी दो जगह नहीं जा सकता, तो उनको फोन करता हूँ कि वहाँ पे शूट कर दो, यहाँ पे लेकर आओगे। तो उस हिसाब से वो सारा काम और सारा एक साथ मिलकर काम करते हैं।
1: आप हमारे स्टूडियो में आए और हम चाहते कि आगे आने वाले दिनों में हमें और भी बहुत सारे फौना एंड फ्लोरा और बहुत सारे वीडियोस देखने को मिले, फिल्म्स देखने को मिले, और आशा करते कि ये फिल्म्स विनर भी बने। तालू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: ये एक्चुअली थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे कहाँ से ढूंढकर आप लेकर आ गए यहाँ पे बिठा दी, इसलिए आपको थैंक यू बोलता हूँ ऑल इंडिया रेडियो सारी टीम को कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया है कि मुझे यहाँ पे आके कुछ तो बोल पाऊँ मैं ना।
1: अभी आप सुन रहे थे इन्फोटेनिंग प्रोग्राम, आज के मेहमान
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये गीत तशन फिल्म से फलक तक चल, उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही आज के मेहमान कार्यक्रम समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेट्टेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

আহ নাচে নাচে কই আহ আহ নাচে নাচে সারে হাসি আহ নাচে নাচে।

जी हिंदुस्तान भर में हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। दोस्तों, 60s, 70s और 80s के दशक में लौट ही गए हैं, तो क्यों ना आज बात करें सिनेमा की उस जोड़ी की जिन्हें म्यूजिक की दुनिया की दो जिस्म एक जान कहा जाता है। जब ये दोनों मिल जाए तो गाने तो हिट होने ही है। मैं बात कर रही हूँ इंडियन सिनेमा के एवरग्रीन म्यूजिकल डुओ आर डी बर्मन और किशोर कुमार की। इस जोड़ी ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक हिट्स दिए। एक साथ इन दोनों ने 165 यानी 165 मूवीज की है। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई थी? तो दोस्तों, इन दोनों की दोस्ती कुछ ऐसे शुरू हुई कि एक दिन बर्मन साहब कुछ रिकॉर्डिंग्स के लिए स्टूडियो गए थे। उसी स्टूडियो की दीवार के ऊपर बैठकर एक आदमी हर एक इंसान को इमिटेट कर रहे थे। जो भी वहां से गुजर रहा था उनकी नकल उतारते जा रहे थे। बर्मन साहब अंदर ही जा रहे थे कि वो आदमी दीवार से कूदकर स्टूडियो में जा पहुंचा। जो जो गाना गा रहे थे उसका सत्यानाश करके वो खुद उस गाने को गाने लगे। जब बर्मन साहब ने पूछा कि ये कौन है, ये आदमी कौन है, तब किशोर दा ने कहा कि मैं अनाथ हूँ, मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, एक चांस दे दो, मुझसे भी एक गाना गवा लो। ये बात सुनकर बर्मन साहब जी खूब हंसे कि ये जो दीवार वाला आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि अशोक कुमार जी का छोटा बेटा किशोर कुमार था। और वहीं से हमारे बर्मन साहब और किशोर दा की दोस्ती शुरू हुई और जिंदगी भर चलती गई। बर्मन जी ने हमेशा माना कि किशोर दा वॉज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर बॉलीवुड एवर हैड। दोस्तों, किशोर दा और बर्मन साहब की बातें और भी करेंगे, लेकिन आइए सुनते हैं इस जोड़ी का पहला गाना आराधना फिल्म का रूप तेरा मस्ताना, किशोर कुमार की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, हिंदी क्लासिक म्यूजिक सुन रहे हैं आप और हम बात कर रहे थे दो ऐसे नामों की जिन्होंने हिंदी सिनेमा के संगीत को एक नई पहचान दी, आर डी बर्मन साहब और किशोर कुमार की। जब ये दोनों साथ आए तो संगीत सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहा, वो कहानी का हिस्सा बन गया। इन दोनों की पहचान एक साथ तब मजबूत हुई जब फिल्मों में नई तरह की धुनें और नई तरह की आवाज की जरूरत थी। पंचम दा का संगीत उस समय के लिए अलग था और किशोर कुमार की आवाज हर इमोशन में फिट हो जाती थी। यही वजह थी कि फिल्म आराधना के बाद ये जोड़ी लोगों की पहली पसंद बन गई। काम करने के तरीके की बात करें तो किशोर कुमार स्टूडियो में कभी कभी गाने के साथ एक्सपेरिमेंट कर लेते थे। सुर बदलना, बोलों में हल्का सा ट्विस्ट देना, ये सब उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था और पंचम दा को यही बात पसंद आती थी क्योंकि उन्हें पता था कि यही से कुछ न कुछ नया निकल के जरूर आएगा। फिर आए वो गाने जो आज भी उतने ही फ्रेश लगते हैं, मेरे सपनों की रानी, रूप तेरा मस्ताना, ये शाम मस्तानी और ओ साथी रे, जैसे गीतों ने इस जोड़ी को हर घर तक पहुंचा दिया। इन गानों में ना आवाज ज्यादा थी ना संगीत भारी थी, बस दोनों का सही बैलेंस था। तो चलिए एक और गाने के साथ आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये शाम मस्तानी किशोर कुमार की आवाज में।

वक्त के साथ फिल्म इंडस्ट्री बदली, म्यूजिक का ट्रेंड भी बदला। एक दौर ऐसा भी आया जब ये दोनों यानी किशोर कुमार और आर डी बर्मन साहब कम सुनाई दिए, लेकिन रिश्ते कभी खत्म नहीं हुआ। सम्मान और भरोसा हमेशा बना रहा। जब पंचमदान ने दोबारा जोरदार वापसी दी तो उनकी धुनों में फिर से किशोर कुमार की आवाज गूंजी। सागर और मासूम के गानों ने ये साफ कर दिया कि ये जोड़ी समय की मोहताज नहीं है। इन गानों में मैच्योरिटी थी, गहराई थी और एक अलग ठहराव था। किशोर कुमार के आखिरी दौर में आर डी बर्मन साहब के साथ काम किया गया आज भी खास माना जाता है। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के गीत इस बात का सबूत है कि अच्छी धुनें और सच्ची आवाज कभी पुरानी नहीं होती, और शायद इसी वजह से आज भी जब मेलोडी की बात होती है तो बर्मन साहब का जिक्र अपने आप हो जाता है, और जब नेचुरल सिंगिंग की मिसाल दी जाती है तो किशोर कुमार का नाम पहले आता है। आर डी बर्मन और किशोर कुमार सिर्फ एक जोड़ी नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर था, एक ऐसा दौर जो आज भी हमारे प्लेलिस्ट में जिंदा है। अब चलते हैं इस यादगार जोड़ी की एक और गीत के साथ, सुनते हैं कोरा कागज था मन ये मेरा, आराधना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना जिंदगी एक सफर है सुहाना फिल्म अंदाज से। इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: दिल से दिल तक बात पहुंची, मिलते मिलते सनम हो।
2: गीत संगीत
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz।

0: दोस्तों अब आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत धन धना धन गोल फिल्म से बिल्लू रानी। इस गीत को गाया है आनंद राज आनंद और ऋचा शर्मा ने।
1: हाँ।

इसी के साथ ही दोस्तों हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। दोस्तों हम लोग देंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ।

0: India's democracy is not merely a system of governance, but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the youth parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interest above all. Prime Minister Narendra Modi today said the last decade has witnessed a record infrastructure upgrade across the country. Sharing a post of MyGov on his social media account, Mr. Modi said the government is committed to building next generation infrastructure for the people of the country to realize the vision of a Vikasit Bharat. The MyGov post highlighted the country's infrastructure transformation over the last 12 years. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the ministry on a proposed Middle East India deep water pipeline. In a statement, the ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep sea energy pipeline, sometimes referred to as the Middle East India deep water pipeline, connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the ministry. The government has debunked a message circulating on social media which claimed that the use of E20 fuel could lead to rejection of vehicle insurance claims. The fact-check unit of the Press Information Bureau has informed that the claim is fake. According to PIB, motor insurance policies remain valid with the use of E20 fuel. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Ahead of the re-examination of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, which is scheduled for the 21st of June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till the 22nd of this month. The National Testing Agency, NTA, has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technology's directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTA said the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until the 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945, saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now, sale and dispensing of cough syrups in smaller villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies.
1: Earlier, the Ministry of Health and Family Welfare has issued a gazette notification saying that the word syrup from Schedule K of the drugs rules under the heading class of drugs has been omitted. Now, with the omission of the word syrup, the exemption will no longer be available for cough syrups. Earlier, the sale of cough syrups in villages with a population of less than 1,000 was permitted without requiring compliance with certain retail sale licensing provisions. The amendment was made to strengthen regulatory oversight of syrup formulations and to align the exemption framework with contemporary public health and safety requirements. The measure is expected to promote responsible distribution and sale of cough syrups while ensuring greater compliance with regulatory standards across the country. Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
0: The Special Investigation Team, SIT, constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegations surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have not yet made any findings public, and the probe is at a preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN Ambassador Harish Parvathaneni made these remarks while addressing the Intergovernmental Negotiations meeting on Security Council reforms. Mr. Parvathaneni said UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the five permanent members.
2: reflecting expansion of the category of two-year term non-permanent category as a convergence, portrays only a part of the picture. Groups and member states add qualifiers and attach other interlinked parameters as they endorse expansion in the non-permanent category. UNSC reform would be grossly inadequate, bordering on failure, if expansion is limited only to the non-permanent category, as it would fundamentally not change the decision-making power structure of the P5. Groups and member states have waited this long for real and meaningful reforms.
0: In women's hockey, India has stormed into the semi-finals of the FIH Hockey Nations Cup in Auckland, New Zealand. India defeated Japan 2-1 in their second Pool A match. India will next face Uruguay in their last Pool A match of the tournament on Thursday. In the FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15th of June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cape Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number two ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. In the second fixture, Belgium and Egypt drew 1-1 in their Group G opening match at Seattle Stadium. In the third fixture of the day, Uruguay played a 1-1 draw against Saudi Arabia in their opening clash at Miami. In the last fixture, Iran secured a hard-fought 2-2 draw against New Zealand in their opening match at SoFi Stadium in Los Angeles. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to participate in G7 summit in Avignon, France this evening. Prime Minister Modi praises Varanasi exhibition in Bratislava, emphasizes role of art and culture in strengthening ties. Government bans messaging app Telegram till the 22nd of this month, ahead of NEET UG retest, message editing feature to remain disabled till June the 30th. Supreme Court seeks responses from center and states on plea to use Aadhaar only as identity proof. India rejects proposal to expand only non-permanent UN Security Council seats, calls reform bordering on failure. And India storm into semi-finals of Women's FIH Nations Cup, defeating Japan 2-1 in Auckland, New Zealand. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की, संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। तीन दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियों में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
4: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोड मैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
3: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
4: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
3: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने

0: 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
1: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में

0: बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड न्यूज एवं दोपहर समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

सुबह के इस भाग में दोस्तों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s, जहां दोस्तों 90s का दौर सिर्फ एक डेकेड नहीं था बल्कि एक इमोशन था, एक ऐसी वाइब जो हर मेमोरी के साथ जुड़ी हुई है। पहला प्यार हो, दिल टूटने का दर्द हो, या शादी में कजिन्स के साथ डांस, हर मोमेंट के लिए एक स्पेशल 90s सॉन्ग जरूर हुआ करता था। और शायद इसीलिए 90s के गाने आज भी दिल के इतने करीब है। सिंपल मेलोडीज, हार्ट लिरिक्स और वो इमोशंस जो सीधा दिल को छू जाता है, चाहे वो ड्रीमी पहला नशा हो, एनर्जेटिक टिप टिप बरसा पानी हो, या फन फील्ड ओ जाने जाना, हर मूड के लिए एक परफेक्ट 90s सॉन्ग जरूर हुआ करता था। तो चलिए दोस्तों फिर चलते हैं नॉस्टैल्जिया की उस म्यूजिकल जर्नी पर और एंजॉय करते हैं कुछ एवरग्रीन 90s हिट्स। और 90s का पहला गीत आप सुन पाएंगे विश्वथामा फिल्म का सात समंदर पार में तेरे, साधना सरगम की आवाज में।

अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। आइए अब सुनते हैं 90s का बहुत ही आइकॉनिक गाना करण अर्जुन फिल्म से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। और ये गाना जितना आइकॉनिक है, इस गाने के सिंगर्स भी उतने आइकॉनिक है। 90s के पॉपुलर ट्रायो कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण।

दोस्तों इसी के साथ ही हिट ऑफ 90s कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और आपसे कुछ ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्मिकमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे थाई खमती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: nang aking nam na li na studio mai chicken ma ba phapoi ne thon si chahang mane kham tai kham ti ho tu khai mai sot yo ho
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात और अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स।

तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बॉलीवुड अपडेट कार्यक्रम और नजर डालते हैं बॉलीवुड की कुछ ताजातरीन खबरों पर। बॉलीवुड में इन दिनों एक्ट्रेस शर्वरी का नाम काफी चर्चा में है। मैं वापस आऊंगा फिल्म में उनके परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने पसंद किया है। इसी के साथ इंडस्ट्री में खबरें हैं कि वो डायरेक्टर लव रंजना का के एक नए प्रोजेक्ट के लिए भी कंसिडर की जा रही है। अगर ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है तो शर्वरी के करियर का एक और बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकता है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि शर्वरी अब बॉलीवुड की मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग एक्ट्रेसेस में से एक शामिल हो चुकी है। और दूसरी तरफ एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की 6th डेथ एनिवर्सरी है आज, और इस मौके पर उनकी बहन श्वेता सिंह कृति ने सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज शेयर किया है और फैंस से सुशांत के सपनों और पॉजिटिविटी को याद रखने की अपील की है। सोशल मीडिया पर भी फैंस ने कई पोछे MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और चिचोरे जैसे उनकी यादगार काम को याद करते हुए ट्रिब्यूट दिया है। एक्टर पंकज त्रिपाठी भी खबरों में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो डायरेक्टर अमित राय की अपकमिंग फिल्म धर्मा में एक स्पेशल कैमियो करते नजर आएंगे। फिल्म की कहानी इंसान और जानवरों के रिश्तों पर आधारित है और इसमें लगभग 240 डॉग्स को दिखाए जाएंगे। फिल्म का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक माना जा रहा है और ऑडियंस इसके बारे में जानने के लिए और उत्सुक है। वही अपकमिंग फिल्म कॉकटेल 2 और वेलकम टू द जंगल जैसे फिल्मों को लेकर बज लगातार बढ़ रही है। इन फिल्मों के ट्रेलर्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज ने सोशल मीडिया पर अच्छी खासी एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी है। ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि आने वाले हफ्तों में ये फिल्में बॉक्स ऑफिस और एंटरटेनमेंट हेडलाइंस दोनों पर छाई रह सकती है। और साथ ही दोस्तों बॉलीवुड में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है धमाल 4 के ट्रेलर की। कॉमेडी फ्रेंचाइज के फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है और इस बार अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी और जावेद जाफरी एक और पागलपन भरी ट्रेजर हंट पर निकलते नजर आएंगे।

देखने दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में कौन से फिल्म और कौन सा सितारा सबसे ज्यादा सुर्खियों बटोरने में कामयाब होती है। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं मोहब्बते फिल्म का चलते चलते यूं ही रुक जाती हूं।

दोस्तों बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

0: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुनले मिनी पन आजोक तारिक मंगलबार इपोहासो आजमबाजी पुनी मिनट मुइक पेशम नकम वांचो साइका पं कपई पोंग का हो पहि फाले वंग का वंगसु प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि जी सोशल मीडिया अकाउंट मा माइ गोव अंकिता पोस्ट का हो पा क्या मा देश मा ले इनके जंग पुम बन तकु बामा योम क्या क्या तो काय ले इंफ्रास्ट्रक्चर जिंग जाऊला अचन आदन दवाले वंदे मिस्टर मोदी ए गवर्नमेंट ए देश विकसित भारत मोंगते जा लनपुकु मा देश खनकनु हानपक मा नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जिंग जाऊला अलाय आदन सौलंग यो तैपुलिचु वंदे इजिले नि बनागा तारिक मखंग ए बन अन तारिक कबले असो अपो अंक नेशनल राउंड विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 टू सो महाक अंग अरुणाचल प्रदेश मखंग ए लोअर दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट मखंग ए आबिदा बेगम बोमा तिराप डिस्ट्रिक्ट मखंग ए ईसा कुमारी सा हिया तोवांग आतोआ नि ले मिहक आजम चा संथम मन कामदो काहोमा आजंग बाजा विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट टू सो होका अनि न्यू दिल्ली मके पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल मा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ए दाबले अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए मनी ईटानगर नाम मके गुंगु होनोई मा जिंगजाऊ क्या अरुणाचल प्रदेश बेम्बो एंड कैन टेक्नोलॉजी सेंटर होका दाबले खांडू ए हमा वनकेजंग वनकाजे मा अरुणाचल प्रदेश जोंग मा ngata zong bembo economic growth entrepreneurship employment generation here environmental conservation ninka homokoset ma na tho na lan ang chawan jang han jau e pha ton kya ta pum zong jan jai chen ma satte pu bo ma mani hoka dap kya haja Arunachal Pradesh Bembo and Ken Technology Center e state ma tai nang hu te kya ngata zong resources pho tha jong ang achang ang kya तोय मोट फो अंग जिंग जौ ले अचंग ले लोकल चासन फो जिंगमी यमी थम सेल्फ हेल्प ग्रुप एस एस जी हो थम फो हिया एंटरप्रेनर्स थम आचाक अजोंग अंक्या ता होतोंग होमोंग अंग सत ले मोकसा अंक्या ला ओंग हु दैपु ले वन ले खांडु एजा बो माजा सेंटर हले जिंग जौ ले अलाई अदन के हन पंग मा अरुणाचल प्रदेश बेम्बो रिसोर्सेस एंड development agency hotham forest department ham ya mau mau stakeholders tham asu pula achok asan kya kachu ngai ban le namsa honu mla chao jignu namchung mani namsai honu ma food processing industries pho anpak ma industrial park zinga jau ang sat le ngo tai kya honu to hu ha kya ka to ang aham atai le mla namchung ajba ma ta सोशल मीडिया का हो मा हाजा खटखा के प्रोजेक्ट ए चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मेन नी ए स्टेट मा इंडस्ट्रियल मोथोसजु आसाक अजोंग से खनक नुहान पंग मा मोरसेत होनोय आलाई अदन हु से बोमा मानजाई मिथम हिया एंटरप्रेनर्स थम हान पंग मा वैल्यू चेन आसाक अजोंग से ले ते सुंग हु ते के मोंग ते कन सुंग हो चांगाय ले जो आहो पु ले वन क्या बो मा हाजा इंडस्ट्रियल पार्क अरुणाचल प्रदेश जों मा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हिया मी तो ची ओंग सेल्फ रिलायंस स्टेट अंग आचंग अंग क्या हान पंग मता खत खा क्या होली अंग यो आचंग ल सतंग क्या ले वन ले एमएलए नाम चुम हजा पे मा नाम साइ होनो मा बीजेपी हो थम मंडल प्रेसिडेंट पो हिया पार्टी मोन मी सन मी थम अंग मत असो क्या प्रगति पद यात्रा तुजो मा चु हक ले होटमलिंग सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 बैडमिंटन बउपान टू सो ईटानगर मा क्या खेलो इंडिया इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम मा मनी मखंग एहोबांग वांगले बो महाजे टूर्नामेंट टू सो अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन ASBA hotam sen ma capital complex badminton association CCBA hotam apuatong le angot asokya changle haja championship ma abawapan ang Arunachal Pradesh makya hoksa matta district to khang mi hok hota pujampan ali badminton bawmi tham haka haile taile boma tournament ma liban matta badminton baw events ma ho ani pujam azok matches abaw hi changtaile boma haja tournament ngani kaple aso opoi changtaile Pangino no makya government ITI ma finishing course program 2026 program mani makang hovang bangle ITI trainees tham ang government scheme for digital literacy resume lai zazing interview hanpak ma ma achona thang angkya here labor here employment lab ningkya mod set kaplo puku makya homoko set honje apono la oton ang angot aso kya ya finishing course program yela ni ban aku tarikap la angotai changtele boma ka homa ajang baja program government of arunachal pradesh ankya department of skill development and entrepreneurship tham apu tong angot aso kya changle ka ho ive इजा आकाशवाणी एटा
1: अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों वांचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम एक्स आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर या फिर आप न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए अब शुरू करते हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और सुनते हैं सुर द मेलोडी ऑफ लाइफ फिल्म का जाने क्या ढूंढता है लकी अली की आवाज में।

दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 4 बजे आप सुन पाएंगे इदुमिश में श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोता अभी आप सुन रहे थे वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सुन पाएंगे इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: एचा आकाशवाणी ईटानगर थालापुची जोहला हो आंडोलिनी एतानीची इदुमिश्मी आहोला कीजी नरगालंबो लिबाचा हुलोनी नुमा बहा एस समुद्र दामी तांदो डेवलपमेंट जो तेगला दामे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में लाहोगने उची गवर्नमेंट में इंडिया आदि एहोशाबा जो तिपुगा लगातार आहोगा आयो बोला पगे उन्हें में जो तेगला माने इंडिया माची इमु के बा अब इनके रोटो इप्रंदु इगाई बोर्सा दाने प्राइम मिनिस्टर में लाहोगा आहोगा मैं दिल्ली माची पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल माने हसुनी गवाने विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट अकापगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला में ओना अयपहा लोअर दिबंबे डिस्ट्रिक्ट रोइंग माचे अबिता बेगम दोने तिराप डिस्ट्रिक्ट माचे ईसा कुमारी सहने तोआवांग अतुआ में अरुणाचल प्रदेश के बने इन बेगा मुदा ला होगा ईटानगर अनुदोचे गुंगू अतिको अरुणाचल प्रदेश बेम्बू दोने केन टेक्नोलॉजी सेंटर आज तेगा बचे चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में अयपहा बने आ सेंटर में अरुणाचल प्रदेश मा अरुआ एरातो तांदो जिगा माने अतिका ची इमु में आमे तांदो आयवा जिगा अरुआ शदा लाय बता आहोगा अतिका ची जोला को जिया आयु अनम्रो अपुर माया सेल्फ हेल्प ग्रुप अनम्रो दोने इकिशा आमे यागे बने अरुणाचल प्रदेश बेम्बू रिसोर्सेस दोने डेवलपमेंट एजेंसी में अली प्रभु सेंटर में अजी जिगा बबुदा ने चीफ मिनिस्टर में लाओ बता आहोगा अरुणाचल प्रदेश अतिका मा अवताची इमु में काजी अतु पुवे खगा नौशाने एके होचा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू में पुनी ईटानगर सिविल सेक्रेटरियट न्यूची ऑफिस मा ट्रैक्शन एजर के अन्य होता हो लाएगा ऑनलाइन पोर्टल में गए आयोपे बता आहोगा अली अज तेगा जिगा यूनियन एम एस एम ई मिनिस्ट्री में हरोगा बने तांदो प्रागा जिता ने चीफ मिनिस्टर में लगाने आज जो मा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट माचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट राजीव गांधी यूनिवर्सिटी माचे सीसीआरडी दोने इकिशा डिपार्टमेंट अनुभव में अब तंद हरोई का बने प्रावजिदा लाओगा दा होगा नामसाई एमएलए जो जिंगनु नामसुंग में बुने नामसाई आते कुछ इंडस्ट्रियल पार्क दोने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के बने ओमे आज का मा अथो बने ऐसा हो लिपा काजिन जो तेगा बा अथुसो बता आहोगा अली अजित ओमा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोना मेन में अरे गबर ने तांदो प्रभुचिदा ने एम एल ए में लगाने अली विजी पार्क में अरुणाचल प्रदेश मचे इदिया चो प्रांबा एवमा अरे औषधा लगादा आहोगा आयापा नामसायत को ने मंडल प्रेसिडेंट आलम्ब्रो लापगे पार्टी मेंबर आलम्ब्रो में प्रगति पद यात्रा छिगामा एमएलए में छिम्बे ओबादा आहोगा बुनी ईटानगर से खेलो इंडिया इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम मने बुपिली नबा सब जूनियर स्टेट रैंकिंग बैडमिंटन टूर्नामेंट ऐसा कहा निर टारो अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन आसबा खोखो मने कैपिटल कॉम्प्लेक्स बैडमिंटन एसोसिएशन में अखने पगा बमा अरुणाचल प्रदेश अन्य खेल

दूसरे से के साथ ही हमने शुरू कर लिया है हमारा अगला कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, और पहला गीत आप सुन पा रहे हैं बंटी और बबली फिल्म का कजरा रे। इस गीत को गाया है अलीशा चिन्नय, शंकर महादेवन और जावेद अली ने।

दोस्तों के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे थांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक एलताली तथा तकनीकी अभियंता HM भूषण। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपकी अपनी RJ कनिक। तो दोस्तों, आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा बोली में समाचार। तांगसा श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज़ पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी लिसनर्स का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज की तीसरी प्रसारण सभा में। आपको बता दूं, दूसरी प्रसारण सभा में आप बने हुए थे आरजे दुनिया के साथ और मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिचिक कनिक, जो आगे के कार्यक्रमों के सफर में आपके संग बनी रहेगी। श्रोता दोस्तों, आपको बता दूं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। और दोस्तों, हर रोज की तरह अब वक्त हो चला है ज्ञान और मनोरंजन से भरा हुआ कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम में स्वागत है और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त गिची कनिक और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। श्रोताओं, शाम का ये सुहाना मौसम, हल्की सी ठंडी हवा और साथ में एक गर्मा गर्म चाय की प्याली, बस फिर और क्या चाहिए। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चाय की जो आम चाय से बिल्कुल अलग है। जी हाँ दोस्तों, इसका रंग भी अनोखा है और इसकी कहानी भी। आज का हमारा विषय है ब्लू टी यानी नीली चाय। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ब्लैक टी, ग्रीन टी, लेमन टी और मसाला टी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन जब पहली बार कोई ब्लू टी का नाम सुनता है तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या ये चाय नीली कैसे हो सकती है, क्या इसमें कोई रंग मिलाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। ब्लू टी एक खास फूल से बनाई जाती है जिसे बटरफ्लाई पी फ्लावर कहा जाता है। इस फूल का प्राकृतिक रंग गहरा नीला होता है और जब इसे गर्म पानी में डाला जाता है तो पानी भी खूबसूरत नीला रंग ले लेती है, इसी वजह से इसे ब्लू टी कहा जाता है। और दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि अगर आप ब्लू टी में थोड़ा सा नींबू का रस मिला दें तो इसका रंग धीरे धीरे नीले से बैंगनी यानी पर्पल हो जाता है। साइंस और प्राकृतिक का ये खूबसूरत संगम देखने लायक होता है। और दोस्तों, आज के दौर में लोग सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि सेहत के लिए भी अलग अलग प्रकार की चाय पीना पसंद करते हैं। ब्लू टी भी उनमें से एक है।

और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ब्लू टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर को फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। कई लोग इसे अपनी वेलनेस रूटीन का हिस्सा बना चुके हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये स्किन को हेल्दी रखने और बालों की देखभाल में भी मददगार हो सकती है। एक और खास बात ये है कि ब्लू टी में कैफीन नहीं होती, इसीलिए जो लोग शाम के समय चाय पीना चाहते हैं लेकिन कैफे से बचना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा विकल्प माना जाता है। और दोस्तों अब जरा सोचिए, एक प्याली नीली चाय, खिड़की के बाहर बारिश की बूंदे और आपका पसंदीदा गाना, शाम और भी खूबसूरत लगने लगता है ना दोस्तों।

दोस्तों आपको बता दूं, ब्लू टी की लोकप्रियता आजकल काफी बढ़ गई है। कैफेस और रेस्टोरेंट्स में इसे अलग अलग अंदाज में सर्व किया जाता है। कहीं इसे हनी के साथ

आपको बता दूं, हर चीज की तरह ब्लू टी का भी संतुलित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अगर किसी को हर्बल प्रोडक्ट्स या फूलों से एलर्जी हो तो पहले सलाह लेना बेटर होता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना ब्लू टी के बारे में, एक ऐसी चाय जो अपने रंग से हैरान करती है और अपनी खासियत से लोगों का दिल जीत लेती है। अगर आपको नए स्वाद और नए अनुभव पसंद है तो ब्लू टी को एक बार जरूर आजमाएं। हो सकता है ये आपकी शाम की नई साथी बन जाए। दोस्तों, रंग चाहे नीला हो या सुनहरा, चाय का असली मजा तो उस पल में होता है जब हमें वो सुकून दे जाए। फिलहाल दोस्तों, इसी प्यारी सी बात के साथ वक्त हो चला है संगीत की तरफ बढ़ने का। तो अपनी शाम को और भी हसीन बनाइए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और तैयार हो जाइए अगले सुरीली गीत के लिए सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग ईटानगर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ बेहतरीन फिल्मी नगमों का।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर यही पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। 5 बजे आप सुन पाएंगे नोक्ते बोली में समाचार। इसके बाद हम फिर लौटेंगे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव लेकर। तब तक के लिए श्रोताओं बने रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के वियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। अरुणाचल प्रदेश के तीन युवाओं आबिदा बेगम, ईशा कुमारी साह एवं तावा वांग आताओ का चयन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के राष्ट्रीय चरण में भाग लेने के लिए किया गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर से ट्रांजेक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज के ऑनलाइन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और फीफा फुटबॉल कप में ग्रुप जी मुकाबले में रात 12:30 बजे से बेल्जियम का सामना इजिप्ट से होगा, जबकि कल सुबह 6:30 बजे ईरान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियां पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की उम्मीद है। और जानकारी हमारे संवाददाता से।
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में जी 7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है।
0: आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा है कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े।
2: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होनी है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू किए जा सकते हैं। एजेंसी ने कहा है कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर से ट्रांजैक्शन 2026 रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज के ऑनलाइन पोर्टल का औपचारिक शुभारंभ किया। इसके साथ ही पर्यटन, संस्कृति, रचनात्मकता तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्रों को डिजिटल स्टोरी लिंकेज और दृश्य सामग्री निर्माण के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई इस तरह की पहली पहल का आधिकारिक आगाज हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय को रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना के तहत इस पहल को सहयोग प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कार्यक्रम की परिकल्पना और आयोजन से सहयोग देने वाले अरुणाचल प्रदेश उद्योग विभाग, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन CCRD, दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग तथा अन्य साझेदार संस्थानों के संयुक्त प्रयासों की भी सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के 3 युवाओं लोअर दिवांग वैली जिले के आबिदा बेगम तथा तिरप जिले से ईशा कुमारी सा और तावावांग आताओ का चयन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2026 के राष्ट्रीय चरण में भाग लेने के लिए किया गया है। ये कार्यक्रम 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट का औपचारिक उद्घाटन आज नई दिल्ली स्थित संसद के केंद्रीय कक्ष में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
3: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से कहा है कि इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास संस्थान और आपासी पते प्रमाण पर रूप में किए जाते हैं। याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति वी मोहनार की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार।
2: और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी मुकाबले में रात 12:30 बजे से बेल्जियम का सामना इजिप्त से होगा, जबकि कल सुबह 6:30 बजे ईरान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। ग्रुप एच के मैच में कल तड़के 3:30 बजे सऊदी अरब का मुकाबला उरुग्वे से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: This is Akashvani, the news read by Narang Koyang. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France today on a two-day visit to participate in the G7 summit. This marks the Prime Minister's 7th consecutive appearance at the G7 summit and India's 13th participation in this crucial multilateral event. This G7 summit holds immense strategic importance for India, as the Prime Minister will strongly amplify the voice and concerns of the Global South on the world stage. French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister upon his arrival this evening. Following the reception, Mr. Modi will participate in a high-level working session themed Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity. Prime Minister Narendra Modi has said art and culture have the power to bring people closer together. This comes after PM Modi and Slovak President Peter Pellegrini witnessed an exhibition centered on Varanasi, including works by Slovak artists at the Presidential Palace in Bratislava, Slovakia yesterday. Calling it a Varanasi Connect in Bratislava, PM Modi appreciated the creative interpretation of Varanasi by Slovak artists. The Ministry of External Affairs said that the exhibition was dedicated to the theme Varanasi City and featured artworks that beautifully captured the spiritual, cultural and everyday life of one of India's oldest living cities. Lok Sabha Speaker Om Birla has emphasized the importance of greater public participation in democracy. Interacting with participants of the Viksit Bharat Youth Parliament 2026 in New Delhi, Mr. Birla said that despite being the world's largest population with diverse cultures and varied geographical conditions, the country has emerged as the world's largest democracy after independence with increasing public participation. The Lok Sabha speaker said that India's democracy is not merely a system of governance but a vibrant tradition of dialogue, consensus, participation and public involvement. He added that the youth parliament is a powerful platform for this democratic culture, which instills in the youth the values of leadership, a sense of duty, logical thinking and placing national interests above all. The Ministry of Petroleum and Natural Gas has clarified that no proposal is currently under consideration by the Ministry on a proposed Middle East India deep water pipeline. In a statement, the Ministry said it noticed a series of media reports suggesting that the government is actively pursuing a deep sea energy pipeline connecting Gujarat to Oman and other Gulf countries. It added that there are no active discussions or negotiations with Oman or any other Gulf countries on this project at any level in the Ministry. Ahead of the re-examination of NEET UG 2026, which is scheduled for 21st June, the government has restricted online messaging and social media app Telegram till 22nd of this month. The National Testing Agency has welcomed the Ministry of Electronics and Information Technologies directions for restricting Telegram access in India for a defined and limited period. In a statement, NTS said that the restriction will cover the day of the NEET UG 2026 re-examination and its immediate aftermath. The agency added that the platform has also been directed to disable the message editing feature for already posted messages until 30th of this month. The government has notified an amendment to the Drugs Rules 1945 saying that exemption given for sale of cough syrups in small villages has been withdrawn. Now sale and dispensing of cough syrups in small villages will be required to take place only through duly licensed pharmacies. The special investigation team constituted for the allegations of misappropriation of donations and valuables at the Ram Temple in Ayodhya began its probe today. The SIT was constituted by the state government after allegation surfaced regarding irregularities in the handling of donations and valuables offered at the Ram Temple. Authorities have yet to make any findings public and the probe is at preliminary stage. India has cautioned that efforts to reform the United Nations Security Council could fail if the expansion is limited to only non-permanent category of membership. India's permanent representative to the UN, Ambassador Harish Parvata Neni made these remarks while addressing the intergovernmental negotiations meeting on Security Council reforms. In FIFA World Cup 2026, there were four draws on a single day at the World Cup for the first time since 15 June 1958, exactly 68 years ago. In the first fixture, debutant Cabo Verde produced one of the biggest upsets, keeping world number 2 ranked Spain restricted to a goalless draw at Atlanta. That's all in this news bulletin. Namaskar.
6: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है और अब आप सब सुन पाएंगे नुक्ति श्रोताओं का कार्यक्रम
7: अब आकाशवाणी ईटानगर डिब्रूगढ़ व नुक्ति प्रोग्राम अतु रंजिता वानबंगा सांपोत दंगरिन रे नंग नुक्ति को बोचो तत्कत तजा मोंगन बाद इचिवान रोक तारीख जुनजंग Kobucho ko tepe, Wango Susia. Prime Minister Narendra Modi me, Teja, Nangha Dangwa, Hum Kohe, Lasanta, Lahun, Lasan Huntanga me, My Government Social Media Nang Ranka. Vixit Bharat Konko, Government He, Nangha Dangrak, Santamtam, Motkatmin, Hadangrang, Laritmin Game, Hongjapka. Hum Ko Chanto, Kamutinte, Diko, Arepawa, Ichiwani, Konko, Lasan Wangti Game, Hongjapka. Vixit Bharat Youth Parliament Hajatni Rokni Irokpa ko Arunachal Pradesh va Vanrom Jancho Pangmi Nginjapte Abida Begam Lower Dibang Valley va Isha Kumari Sha Diko Tuawang Atwa Tirab va National Round Rang Selectanka Ar Vixit Bharat Youth Parliament pe Speaker Lok Sabha Om Birla me Central of Parliament New Delhi nang Theja Inaugurate Huanka Chief Minister Pema Khandu me Maja Arunachal Pradesh Bembunia Ken Technology Center Gungu Itanagar Nang Inaugurate Hunka Diko Arwa Pe Nang Minyan Rondong Rang Diko Nang Hadang Nang Chilum Lup Nang Lam Linga Me Hongjapka Arwa Pe Nang Me Chilum Lup Nang Tahone Arlang Ki The Pe Nang Nok Nang Ha Rang Jancho Pang Mi He Kamot Kar Rang Self Help Group Rang Are Nga Nang Mot Ka Te Vi Ka Te Rang Lam Linga Me Hongjapka Chief Minister में Arunachal Pradesh Bamboo Resource and Development Agency, Forest Department निया चंतो stakeholder निया अते काम थे पे लांग था दंकु आंगे का. Chief Minister Pema Khandu में Traction 2026 online portal Residency and Film Challenge पे अते Office Civil Secretariat Itanagar नंग मजा launch हुआ का. अरे पे नंग Culture Tourism गा नंग मोट का रंग लम्ली गा में होंगे जाप का. अरे रंगवो जाको चीफ मिनिस्टर में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंग रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग परफॉर्मेंस स्कीम खन को मोट का था दंकु आंगे का डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेंटर फॉर कल्चर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन राजीव गांधी यूनिवर्सिटी दिको चंतो इंस्टीट्यूशन है अरे काम को रूनंग था दंकु आंगे का Industrial Park for Food Processing Industry Namse Nang Kamot Pe Hoksok Rang MLA Namse Chao Jignu Namchum Maja Hokkomba Social Media Nang Are Project Pe Chief Minister Pema Khandu Nia Deputy Chief Minister Chao Namin He Are Koko Motkata Tangku Angeka Are Pe Nok Tang Rang Lam Li Ngame Time Hongjapka Maja Khelo India Indoor Badminton Stadium Itanagar Nang Wan Bali Sub Junior State Ranking Badminton Khel Luam Hajatni Rokni Rokpa Pe Maja Me Lomka Are Khel Luam Pe Capital Complex Badminton Association Arunachal State Badminton Association Konko Lomthokka Are Ko Rokni Wante District Wa Chathe Rokni Wan Bali Lomte Ichi Wante Events Rang Milala Me Chani Rokset Ingit Wa Ikova Chani Rokngit Irok Lomte Are Khel Pe बुधबातों को दंगमिन कामों तेरंग मजा गवर्नमेंट आईटीआई पांगिन्नंग फिनिशिंग कोर्स प्रोग्राम हाजातनी रोगनी रोकपा पे हेतुएका अरे प्रोग्राम पे इची वानबंगा में इची वान वानकुतारिक चुनतो को दंगमिन अरे प्रोग्राम को गवर्नमेंट स्कीम रिज्यूमे रंग डिजिटल लिटरेसी इंटरव्यू प्रिपरेशन रंग लेबर निया काम जटरंग हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हे ngawa हेथोमिन अरे प्रोग्राम पे डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट

श्रोता दोस्तों, अभी आप भारी बारिश से सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और नौक्ते श्रोताओं का समाचार। आपको बता दूं, नौक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। और आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।

गुड इवनिंग दोस्तों, और स्वागत है आप सभी श्रोताओं का इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम पर। दोस्तों, आज शाम ऑफिस से निकलते वक्त क्या आपने एक चीज नोटिस की कि ट्रैफिक वही है, सिग्नल्स वही है, लेकिन हर गाड़ी में एक अलग कहानी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, कोई घर पहुंचने की जल्दी में है, कोई दोस्तों से मिलने जा रहा है, और कोई बस म्यूजिक के साथ अपना मूड सेट कर रहा है। तो अगर आप भी इस वक्त रोड पर है तो वेलकम टू इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम। मैं हूँ आपके रेडियो दोस्त गिचे कनिक, और अगले कुछ वक्त तक कंपनी मेरी और गाने आपके। और दोस्तों, अब जो गाना आ रहा है ना, वो उन लोगों के लिए है जिनके गैलरी में हजार फोटो से लेकिन डिलीट करने का टाइम कभी नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, फिल्म सनम तेरी कसम से खींच मेरी फोटो। तो दोस्तों, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए और गाने का मजा लीजिए।

0: मैडम, मिस्टर भाटिया दिल्ली वाली फैक्ट्री बेच रहे हैं। अगर वो फैक्ट्री हम खरीद लें तो बहुत फायदा होगा।
1: वो तो ठीक है, मगर मुझे विजय से बात करनी होगी, और वो लंदन से एक हफ्ते बाद आ रहे हैं। वो लंदन नहीं गया?
2: नहीं।
1: क्यों?
2: ऐसे आओ।
1: ये क्या हो गया?
2: किसी से टकरा गया था मां, चोट लग गई। बहुत ही मजा आया।
1: विजय, ये क्या दीवानापन है?

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव और अब वक्त हो गया है अगले गाने का। वैसे दोस्तों ट्रैफिक का सीन कुछ भी हो, एक अच्छा गाना हमेशा जर्नी को थोड़ा बेटर बना देता है ना दोस्तों। तो सीट बेल्ट टाइट रखिए, मूड लाइट रखिए और एंजॉय कीजिए ये नेक्स्ट सॉन्ग बे इंतहा।

दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम के महफिल का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, शाम जब ढलती है ना तो सिर्फ दिन ही खत्म नहीं होता, कई यादें, कई बातें और कई एहसास भी साथ लेकर आती है। नमस्कार दोस्तों, दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब वक्त है थोड़ा रुकने का, थोड़ा मुस्कुराने का और दिल की बातें सुनने का। आप सुन रहे हैं शाम के महफिल कार्यक्रम, एक ऐसा महफिल जहां होगा सुकून भरा संगीत, खूबसूरत शायरियां और दिल को छू लेने वाली बातें।

दोस्तों, शाम की खामोशी में भी एक आवाज होती है जो दिल तक पहुंच जाए, वही तो महफिल की बात होती है। तो चाय की चुस्की हो, सफर का साथ हो या घर की राहत, अगले कुछ लम्हों तक इस महफिल का हिस्सा बनिए। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त गिजी कनिक और शुरू करते हैं शाम की महफिल का ये खूबसूरत सफर। तो दोस्तों, आइए इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं शाम की महफिल कार्यक्रम का पहला खूबसूरत गीत।

दोस्तों, शाम की महफिल कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और अगला गाना उन्हीं में से एक है। कभी कभी जिंदगी में कोई ऐसा लम्हा आता है जब सब कुछ वही होता है, लेकिन फिर भी सब कुछ नया लगने लगता है। इसे खूबसूरत एहसास को अपनी आवाज और सुरों में पिरोया गया है इस अगले गीत में। तो शाम की ठंडी हवाओं, चाय की खुशबू और दिल के सुकून के साथ सुनिए फिल्म आई हेट लव स्टोरी से बेहद खूबसूरत नगमा बहारा।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होती है और आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम जिसका विषय है युवाओं के लिए खेलकूद गतिविधियों का महत्व। इस विषय पर अपने विचार रखेंगे श्री ताजे महाराज जी और उनसे बातचीत करेंगे मृदुला रॉय। आइए सुनते हैं ये खास साक्षात्कार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। मैं हूं आपकी रेडियो साथी मृदुला रॉय। आज के विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है श्री ताजे मारा सर जी, जो डीटीओ कम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर स्पोर्ट्स के एजुकेशन डिपार्टमेंट से कार्यरत है। नमस्कार सर।
2: नमस्ते मैडम जी।
1: सर, आपको हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद मैडम जी।
1: तो सर, मेरा पहला प्रश्न है, डीटीओ क्या है? सर, आपके पद में लगा हुआ है डीटीओ, तो मैं जानना चाहती हूँ और हमारे श्रोताओं को भी जानकारी दे दीजिए सर।
2: जी, सबसे पहले मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक काबिल समझा और एक मौका दिया है इस आकाशवाणी के इस स्टेशन में आने के लिए। तो मैं स्पष्ट रूप से मतलब शॉर्टली मैं बताना चाहूँगा, डीटीओ का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर एंड ऑर्गेनाइजर, जो कि हम लोगों के अरुणाचल प्रदेश के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक पोस्ट दिया जाता है, जो कि भारत स्काउट एंड गाइड, जो कि यूथ अफेयर्स को जो है भारत स्काउट एंड गाइड के जितने भी एक्टिविटीज है स्कूल्स में यूनिट में होता है, उसको जो है देख रेख करने के लिए केयर टेकर में देता है।
1: सर, स्काउट्स क्या है और गाइड्स क्या होते हैं? सर,
2: स्काउट्स एंड गाइड ये हम लोगों के भारत स्काउट एंड गाइड जो हम लोगों के इंडिया में जो है, इसी से एक जुड़ा हुआ हम लोगों का अरुणाचल एक यूनिट है, भारत स्काउट एंड गाइड अरुणाचल प्रदेश।
1: जी,
2: ये स्काउट्स एंड गाइड एक वॉलंटियर सर्विस है, जहाँ में जो हम लोगों के बच्चे, जो स्कूल के बच्चे जो है बढ़ चढ़ के उबर के वॉलंटियरली एक हिस्सा लेते हैं कि मैं भी एक स्काउट बनूंगा, मैं भी एक गाइड बनूंगा बोल के। ऐसे है मैडम जी।
1: बच्चे सर स्काउट गाइड में क्या करते हैं सर? किस बच्चे तरह की ट्रेनिंग होते हैं उनका?
2: जी हाँ, इसमें हम लोगों का भारत स्काउट एंड गाइड में स्काउट्स एंड गाइड्स का ये स्टेजेस होता है मैडम जी, प्रवेश जी, प्रथम द्वितीय तृतीय करके ऐसा होता है। इसमें हम लोग बच्चों को भारत स्काउट एंड गाइड के अंदर में हम लोग उनको लाइफ स्किल्स, जो उनको बहुत जरूरी होता है लाइफ स्किल, जीने का जो एक एक्टिविटीज जो होता है डेली लाइफ में, उसको हम लोग बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों उसी को सीख के बच्चे अपना आप में एक पर्सनालिटी, एक डेवलपमेंट, एक ऑलराउंड डेवलपमेंट में बच्चे जो है उसमें पुलपिल हो जाता है।
1: तो आपके कहने के अनुसार मतलब इस तरह की ट्रेनिंग दी जाते कि बच्चे फ्यूचर में जाकर मतलब अपने पाँव में खुद खड़े हो सके, अगर उन्हें कुछ नौकरी भी ना मिले तब भी।
2: जी मैडम जी।
1: तो सर, मैंने ऐसा भी सुना था कि बच्चों को राज्य पुरस्कार यानी कि स्टेट अवार्ड गवर्नर के द्वारा दिए जाते हैं, ये कब दिए जाते सर बच्चों को?
2: ये मैडम, हम लोगों को बच्चों को स्टेजेस होता है ट्रेनिंग का, उसमें प्रवेश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके हम लोगों का ये स्टेजेस होता है, जिसको पार करते हुए बच्चे जो है राज्य पुरस्कार के लिए काबिल बन जाता है। उसके लिए हम लोग टेस्ट लेता है, राज्य पुरस्कार का टेस्टिंग कैंप होता है, उसमें बच्चे आके टेस्ट देता है और उस टेस्ट में जो पास होता है उसका हम लोग राज्य पुरस्कार जो है गवर्नर की तरफ से, हमारा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की तरफ से दिया जाता है।
1: सर, जब आप लोग टेस्ट देते हैं, क्या वो प्रैक्टिकल होते हैं या फिर रिटेन या फिर वाइवा वगैरह भी लेते सर टेस्ट?
2: मैडम, उसमें हम लोगों का दोनों होता है, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी।
1: अच्छा।
2: थ्योरी हम लोगों का क्लासेस रहता है, उसके बाद में प्रैक्टिकल, मैक्सिमम हम लोग प्रैक्टिकल में ध्यान देता है।
1: जैसे कि सर, आप लोग प्रैक्टिकल में क्या सिखाते हैं?
2: प्रैक्टिकल में मैडम, सबसे पहले हम लोगों का पायनियरिंग का होता है, जहाँ में बच्चे जो है पायनियरिंग सीखता है, किस तरह से जब कभी मुसीबत के समय में रस्सी को किस तरह से जोड़ सकता है, जैसे कहीं जंगल में चला गया है, कहीं पहाड़ में, कई जगह में सिचुएशन जहाँ में कोई दूसरा से मदद ना मिले, बच्चा पायनियरिंग का द्वारा से जो बच्चे जो है अपना आपका अपना लाइफ को भी सेविंग कर सके, दूसरा का लाइफ को भी बचा सके, पायनियरिंग का होता है। उसके बाद मैडम, उसमें हम लोगों का पर्स एड भी देता है, जैसे बच्चे फर्स्ट एड का जो एक्टिविटीज़ के बारे में सीखता है, जहाँ में कभी कभार कभी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाएगा, जैसे ब्लड का आ जाता है या अर्थक्वेक आता है या फिर कहीं युद्ध का माहौल बन जाता है कभी कभी. ऐसे माहौल में जो बच्चे जो है फर्स्ट एड को सीख के, जो जो नीडी पीपल है, जो ज़रूरतमंद को बच्चे जो है साथ देता है, वेल ट्रेन होता है कि उसको जो है डॉक्टर को, डॉक्टर्स या मेडिकल तक पहुंचने से पहले जो उसको जो हेल्प दे सकता है बच्चों को, हम लोग वो ट्रेनिंग देता है.
1: ऐसा कभी आपके जीवन में आया कि आपको बच्चों के साथ कुछ ऐसा हेल्प देना पड़ा कहीं पर?
2: हाँ जी, हाँ मैडम जी, कई बार ऐसे हुआ. हम लोगों का स्कूल्स में भी ऐसे ऐसे, एक बार हम लोगों का स्कूल में जब हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा था, तो उसमें हम लोगों का टीचर जो है पूरा धूप में, इतना मतलब हीट वाला धूप में जो है टीचर काम करते समय में एक बार गिर गया था, चक्कर लग के गिर गया. तो हमारा स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे लोग आया है, आके वो लोग जो है स्ट्रेचर बनाया है इमीडिएटली.
1: अच्छा, खुद बनाया है?
2: खुद बनाया है स्ट्रेचर. अच्छा, खुद बना के उसको जो है आइसिंग करना, उसके बाद में उसको उठा करके सही ये सेफ्टी का ये जो मेजर्स को जो है जो पूरा करके जो है मेडिकल तक पहुंचा के हमारा एक टीचर का भी जान को बचाया था.
1: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर. इस तरह की ट्रेनिंग मेरे ख्याल से केवल स्काउट गाइड को ही नहीं, सभी लोगों को देना चाहिए.
2: जी हाँ.
1: क्या सर ये ट्रेनिंग बड़ों के लिए भी होते हैं, जैसे कि आप हैं, मैं हूँ, अब हमें भी दिया जा सकता है क्या?
2: जी हाँ, अवश्य अवश्य दिया जा सकता है. अगर हम लोगों के भारत स्काउट एंड गाइड में कोई एडल्ट जो मेंबर्स यानी कि 18 साल से जो ऊपर है जो जुड़ना चाहता है, तो हम लोग बेसिक कोर्स देता है उनको, बेसिक स्काउट मास्टर, बेसिक गाइड कैप्टन का कोर्स. अच्छा, में अच्छा. हम लोग उनको इनवाइट करता है, वो वॉलंटियरली आता है, तो उनको हम लोग बेसिक, एडवांस, SWB ऐसे करके स्टेजेस कोर्स देता है, तो उसमें जो है सिखाया जाता है.
1: सर आपके अंदर में यानी कि जो अभी अब तो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर है ना सर, तो आपके अंदर कितने स्काउट गाइड्स होंगे सर?
2: फिलहाल मुझे जो सरकार ने जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझे जो कार्य दिया है, जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स यानी कि चिंपू सेकेंडरी स्कूल से लेकर के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल निर्जुली का एरिया को जो मुझे संभालने के लिए दिया है केयर टेकर के लिए, तो मैंने वहाँ जब मैंने देखा है तो हम लोगों के पास 54 यूनिट्स है, 54 स्काउट्स एंड गाइड्स यूनिट है टोटल जो है, उसमें लगभग 400-500 का बीच में स्काउट्स एंड गाइड मैडम है
1: जुड़े हुए हैं
2: मैडम.
1: तो इसमें प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल दोनों ही है सर?
2: इसमें मैडम प्राइवेट स्कूल भी है, गवर्नमेंट स्कूल भी है. भारत स्काउट एंड गाइड में कोई भी जो वॉलंटियरली आता है तो उसको हमेशा वॉलंटियरली ही उनको वेलकम करता है मैडम.
1: अच्छा, तो सर ये जो राज्य पुरस्कार होते हैं ना, स्टेट अवार्ड, उसके बाद भी कुछ बच्चों को दिया जाता है क्या सर? नेशनल लेवल में कुछ पुरस्कार दिया जाते हैं?
2: जी मैडम, राज्य पुरस्कार जो हम लोगों का गवर्नर अवार्ड जो है, जो स्टेट का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, इसका नेक्स्ट जब बच्चे जो और काबिल बन जाएगा, बच्चा और एक्सपीरियंस हो जाएगा और ट्रेनिंग लेगा, उसका बीच में उनको कुछ टास्क दिया जाएगा और टास्क को बच्चे जो है कंप्लीट करते हैं तो उसको जो राष्ट्रपति अवार्ड यानी कि प्रेसिडेंटल अवार्ड भी उनको मिल सकता है.
1: अच्छा, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी शायद?
2: जी हाँ, उसके लिए बच्चों को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, प्लस जो स्टेट से जो हम लोग जो है सिलेक्ट करके भेजेगा कि जो सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भेज के फिर अगेन उसका फिर राष्ट्रपति जब पुरस्कार लेने से पहले वहां फिर उनको टेस्ट दिया जाएगा, अगर वो टेस्ट में पास होता है तब जाके उनको जो राष्ट्रपति अवार्ड मिलेगा.
1: अच्छा सर, कुछ जो पेरेंट्स होते हैं उनका ये कहना है कि बच्चे पढ़ाई में ही ज्यादा ध्यान देना है, स्काउट गाइड NCC वगैरह में जाने से मतलब बच्चों की पढ़ाई में कमी आती है, मतलब बर्बाद हो जाते, कुछ इस तरह का कहना है पेरेंट्स का. मैंने भी सुना कुछ लोगों के बातों को सुनने के बाद मैंने ये बात पूछा आपसे, तो आप क्या कहेंगे सर इस बात पर?
2: मैं इस पर्सन आपने मुझे सवाल पूछा है, मैं इसको तो यही कहना चाहूंगा, आज के दौर पर जब हम सही आपका ये में देखा जाए तो एक इंसान को ऑलराउंड डेवलपमेंट में ज्यादा फोकस करना चाहिए. अगर आपका शरीर मजबूत नहीं होगा तो आपका जो है दिमाग जो है मजबूत नहीं होगा, मैं ऐसे मानता हूँ. तो चारों तरफ से आप अगर मजबूत होता है तभी जाके आप मजबूत होगा तो आपका सोसाइटी मजबूत होगा. इसलिए ये जो स्काउट एंड गाइड का जो एक्टिविटी है ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, उसके बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होता है, तो प्रैक्टिकल एक्टिविटी होता है जो कि बच्चों को बहुत जरूरत है।
1: जी जी सर, आप भारत स्काउट गाइड से तो जुड़े हुए ही हैं, साथ में आप डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो दो दो काम आप एक साथ कर रहे हैं, क्या इसमें आपको कुछ मुश्किल नहीं आती?
2: मैडम, इसमें मुझे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आता है, क्योंकि मुझे जो पर्टिकुलर जो दिया है भारत स्काउट एंड गाइड का, जो मुझे DTO दिया है, प्लस सरकार ने मुझे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर के लिए भी दिया है, इसमें मैडम दोनों को मैं जब देखता है तो दोनों का काम एक ही है।
1: अच्छा।
2: क्यों मैं एक ही बोलने से, मैडम दोनों यूथ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है दोनों एक के लिए ही होता है। जैसे स्पोर्ट्स में हम लोग फुटबॉल खेलते हैं, आपका खो खो होता है, कबड्डी होता है, या फिर मैडम जी ये भी होता है कि आपका ट्रैक एंड फील्ड का कुछ इवेंट्स होता है। इसी तरह स्काउट्स एंड गाइड में हम लोग देखता है तो बहुत सारा पायनियरिंग का एक्टिविटीज होता है, बहुत सारा परसेट का एक्टिविटी होता है, बहुत सारा मार्च पास का एक्टिविटी होता है, एंड

0: इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मुझे जो कार्य जो दिया है, मैं उन्हें बहुत मतलब खुशी से करता हूँ मैडम जी।
1: सर, क्या हमारे राज्य से यानी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बच्चे कहीं बाहर खेलने के लिए गए हैं और उसका नतीजा किस तरह के थे?
0: हाँ मैडम, हम लोगों का इसमें वेरी प्रैक्टिकली मतलब हम लोगों का सुब्रतो कप करके एक फुटबॉल का होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से फिर नेशनल जाता है मैडम ना। उसमें हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट से कई बार हम लोगों ने गया है, स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट किया है, जहाँ में हम लोगों का बच्चा जो है कई बार जीता है ट्रॉफी को, स्टेट लेवल में भी जीता है। उसके बाद दूसरा स्पोर्ट्स में देखने से जैसे मुख्यमंत्री का हम लोगों का स्पोर्ट्स एक्टिविटी होता है, जहाँ में बच्चे जो है ट्रैक एंड फील्ड का, जेवलिन थ्रो में, शॉट पुट थ्रो, ट्रैक एंड फील्ड का जो 400 मीटर रेस, ये सब में बच्चे जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स का बच्चा खास करके बहुत ही स्मार्ट है, और कई बार उन्होंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज ऐसे करके मेडल कई बार लिया है मैडम।
1: बाहर में जाकर भी सर नेशनल लेवल में भी मिले हैं?
0: नेशनल लेवल में फिलहाल अभी तक का मेरा रिकॉर्ड में तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन मुझे सुनने को मिला है कि नेशनल में भी कई बच्चे जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज लेके आए,
1: मिल
0: अभी तक
1: चुके
0: मुझे खबर
1: हैं।
0: मिला है मैडम जी।
1: जी, बहुत अच्छी बात है सर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो केवल मार्क्स ही दिखते हैं, बच्चों की पढ़ाई की तरफ ही ध्यान देते हैं। जैसे उन लोगों का कहना है भारत स्काउट गाइड में नहीं जाना है, एनसीसी में नहीं जाना है, तो कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेल कूद में जाए और अपनी पढ़ाई खत्म करें। तो सर इस तरह से कुछ बच्चे ऐसा भी है सर जो बहुत कमजोर होते हैं पढ़ाई में, वो पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, तो वो बच्चे केवल खेल कूद में ही ध्यान देते, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे सर?
0: मैं ये जो उन बच्चों के लिए प्लस जो पेरेंट्स जो ये सवाल जो उठाया है कि मतलब बच्चा जो है स्पोर्ट्स में खेलने से उसका पढ़ाई जो है नुकसान हो जाता है, मैं तो उन्हें ये कहना चाहूँगा, अगर बच्चे भारत स्काउट एंड गाइड में जुड़ा रहता है, मार्च पास एक्टिविटी में देश का जो हम लोगों का स्टेट का और देश का कुछ कुछ प्रोग्राम्स जो होता है, नेशनल प्रोग्राम, स्टेट प्रोग्राम में या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जब जुड़ता है तो बच्चा डिसिप्लिन सीखता है। डिसिप्लिन जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जब बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा तो आप वो बच्चा को देख सकता है कि वो बच्चा में बहुत सारा चेंजेस हो जाता है, और जब डिसिप्लिन हो
1: हाँ,
0: जाता है तो बच्चा ऑटोमेटिकली पढ़ाई भी करता
1: पढ़ाई
0: है,
1: में भी
0: पेरेंट्स
1: ठीक
0: का
1: हो
0: बात
1: जाते
0: भी
1: हैं।
0: मानता है, हाँ उनका जो है पोटेंशियल जो उनका जो ऊर्जा जो शरीर में जो है वो दुगना हो जाता है।
1: ऐसा कोई पेरेंट्स आपके सामने आए कि आप हमारे बच्चों को कहीं लेकर ना जाए, वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, इस तरह से कोई पेरेंट्स आए सर आपके
0: जी हाँ,
1: पास?
0: वेरी प्रैक्टिकली हम लोगों का सोसाइटी में अभी भी ऐसा ऐसा कोई पेरेंट्स है जो विश्वास करता है कि सिर्फ पढ़ना है, बच्चा जो पढ़ाई पढ़ाई करते रहना है, खेलकूद में बिल्कुल नहीं खेलना, बोल के भी ऐसा भी पेरेंट्स कुछ
1: जी,
0: कुछ
1: ऐसा
0: है
1: बहुत
0: अभी भी।
1: सारे हैं,
0: जी हाँ है,
1: तो ऐसे पेरेंट्स को आप किस तरह से हैंडल करते सर?
0: ऐसे पेरेंट्स को मैं जो है स्पोर्ट्स एक्टिविटी के बारे में या फिर भारत स्काउट एंड गाइड का यूथ एक्टिविटीज के बारे में मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ, इसका इम्पोर्टेंस को मैं बताता हूँ। जब मैं इम्पोर्टेंस को बताता है तब पेरेंट्स लोग सोच में पड़ जाता है, ओ सच में ऐसे होगा वो क्या होगा। मैं उन्हें एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया
1: हाँ,
0: है देख सकता है, महेंद्र सिंह धोनी हो गया है, अभी इंटरनेशनल में देखने से अभी लियोनेल मेस्सी हो गया है,
1: हमारे
0: रोनाल्डो हो
1: यहाँ
0: गया
1: के तो
0: है।
1: बहुत सारे
0: जी
1: लोग
0: हाँ
1: हैं जो बाहर गए हुए हैं,
0: जी मैडम,
1: तो बाद में फिर पेरेंट्स मान जाते हैं सर।
0: अब पेरेंट्स मान जाता है और पेरेंट्स मानते हुए ये भी बोलता है कि होगा, जो टीचर्स का जो गाइडेंस में जो एक्टिविटी होता है पेरेंट्स को अलाउ कर देते हैं।
1: जी सर, आप हमारे यहाँ आए और बहुत सारी जानकारियां दी सर, भारत स्काउट के बारे में भी और स्पोर्ट्स के बारे में भी। सर, आप जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: जो दर्शक जो सुन रहा है मैं उन्हें यही संदेश देना चाहूंगा, हम लोगों के अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में बच्चे जो है, आजकल के बच्चे जो है मोबाइल फोन्स में, लैपटॉप गेमिंग में, बहुत सारा चीज़ों में मतलब उलझा हुआ है बच्चे जो, तो जब हम लोग ग्राउंड में देखता है, फील्ड में देखता है तो बच्चा जो है बहुत कम है, इसका चलते जो है कुछ कुछ बच्चा लोग जो है शरीर में बहुत कमजोरी हो रहा है। तो मैं यही अनुरोध करता हूँ, मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी आइए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लीजिएगा, यूथ एक्टिविटी में भाग लीजिएगा, बहुत सा उसमें क्षेत्र है, बहुत सा एक्टिविटीज़ है जहाँ में आपको कुछ कुछ एक्टिविटीज़ पसंद है वाले कुछ कुछ पसंद होगा, तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ और स्वस्थ रहेगा, तब आप जो पढ़ाई करने में भी आपको और ज्यादा आपको सहायता मिलेगा। ऐसे होने से आपका जो है सपना जो है, आपका एम जो है, वो एम को आप हासिल करने में कोई नहीं रोक पाएगा।
1: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम और हमारे साथ जुड़े हुए थे श्री ताजे मारा सर जी, जो DTO कम डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अरुणाचल प्रदेश से जुड़े हुए थे। तो इसी के साथ आज की ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होती है। सर, आपको आकाशवाणी ईटानगर की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप हमारे श्रोताओं को बहुत सारे जानकारियां दी भारत स्काउट के बारे में भी और स्पोर्ट्स के बारे में भी।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: दोस्तों, इसी के साथ ही विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को। स्टे ट्यून्ड।
3: सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

श्रोता दोस्तों, इसी के साथ ही गीतों का ये सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:30 पर आप सुन पाएंगे आधी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें, उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे आपका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आज के कलाकार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आज के कलाकार कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो साथी गीचिक कनिक। दोस्तों, हर दिन हम जिंदगी के बागडोर में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि कभी कभी म्यूजिक ही होता है जो हमें थोड़ा रुकना सिखाता है, थोड़ा फील करना सिखाता है। और आज का एपिसोड

पली बड़ी नीति मोहन ने बचपन से ही म्यूजिक को सिर्फ हॉबी नहीं बल्कि डिसिप्लिन की तरह लिया था। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की प्रॉपर ट्रेनिंग ली, सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने भरतनाट्यम और कथक जैसे डांस फॉर्म्स भी सीखे। और दोस्तों, जब कोई आर्टिस्ट म्यूजिक और मूवमेंट दोनों को समझता है ना, तो उसकी परफॉर्मेंस सिर्फ साउंड नहीं रहती, वो एक इमोशन बन जाती है। और आज हम उनकी वॉइस को जो एफर्टलेसली सुनते हैं, उसके पीछे इयर्स ऑफ हार्ड वर्क छुपा होता है।

चलिए दोस्तों, अब थोड़ा उनके बॉलीवुड जर्नी के स्टार्ट पे आते हैं। तो दोस्तों, साल था 2012, एक फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था स्टूडेंट ऑफ द ईयर। और इसी फिल्म में आता है एक गाना जो आज भी हर जनरेशन की प्लेलिस्ट में मिल जाती है। दोस्तों, गीत के बोल है इश्क वाला लव। इस गाने को कंपोज किया था विशाल शेखर ने और नीति मोहन ने इसमें सलीम मर्चेंट और शेखर रफजानी के साथ अपनी आवाज दी थी। ये उनका बॉलीवुड का एक मेजर एंट्री पॉइंट था। और दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि कभी कभी इंडस्ट्री में पहला रिलीज और पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग डिफरेंट होता है। इश्क वाला लव पहले रिलीज हुआ, लेकिन उनका पहला रिकॉर्डेड हिंदी सॉन्ग एक्चुअली जीआरए था। लेकिन ऑडियंस को क्या याद रहता है, वो इमोशन, वो फील, वो कनेक्शन। और दोस्तों, दोनों सॉन्ग्स ने ही उन्हें ओवरनाइट रिकॉग्निशन दिलाया था। चलिए, इसी के साथ आपको सुनवाते हैं जीआरए सॉन्ग फिल्म जब तक है जा का, नीति मोहन की आवाज में।

दोस्तों, फिल्म जब तक है जा का ये ट्रेक AR रहमान ने कंफोज किया था और नीति मोहन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रहमान सर ने उन्हें इस गाने के लिए इसीलिए कॉल किया था क्योंकि उन्होंने उनकी स्टेज परफॉर्मेंसेस में स्पिरिट नोटिस की थी। तो दोस्तों, मतलब ये सिंपल ऑडिशन नहीं था, ये एक रिकॉग्निशन थी आर्टिस्ट के नेचुरल एनर्जी की। इस गाने में अनुष्का शर्मा का कैरेक्टर एक फुल स्पंकी केयर फ्री वाइब के साथ परफॉर्म करता है और नीति मोहन की वॉइस उस एनर्जी को परफेक्टली मैच करती है। दोस्तों, क्रिटिक्स ने भी उनकी सिंगिंग को काफी अप्रिसिएट किया। कोई मोई ने उनकी वॉइस को रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और वेरिएशन से भरी हुई कहा। और दोस्तों, इसी साल उनके करियर में एक और माइलस्टोन आता है, फिल्म फेयर आरडी बर्मन अवार्ड फॉर न्यू म्यूजिक टैलेंट। साथ ही उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी ईयर उनका एक और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आता है, उनका इंडिपेंडेंट सिंगल जाजा, जिसमें उन्होंने खुद कंपोजिशन और राइटिंग की और उनके फादर ने उन्हें सपोर्ट किया। मतलब दोस्तों, ये सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग नहीं थी, ये उनका आर्टिस्टिक आइडेंटिटी बिल्ड होने का फेज था। चलिए दोस्तों, इसी के साथ नीति मोहन के आवाज में एक और गीत सुनते हैं, फिल्म गंगूबाई से।

0: दोस्तों आइए इस गीत के बाद आज के कलाकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नीतू मोहन के बारे में। दोस्तों अब थोड़ा उनके उस साइट की बात करते हैं जो सिर्फ स्टेज और स्टूडियो तक लिमिटेड नहीं है। तो दोस्तों नीतू मोहन सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर नहीं है, वो एक सोशली रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट भी है। उन्होंने कई चैरिटी इवेंट्स और अवेयरनेस कंसर्ट्स में परफॉर्म किया है। 2014 में उन्होंने हम है उम्मीद है कश्मीर कंसर्ट में परफॉर्म किया, जहां कश्मीर फ्लड्स के विक्टिम्स के लिए फाउंड रेज किया गया था। इसी टाइम उन्होंने आसाम फ्लड रिलीफ के लिए भी न्यू दिल्ली में एक म्यूजिकल कंसर्ट में पार्टिसिपेट किया। 2016 में वो स्माइल फाउंडेशन के चैरिटी गाला डिनर का हिस्सा बनी, जहां अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन और यूथ एम्पावरमेंट के लिए अवेयरनेस और फंड्स रेज किए गए थे। और 2017 में उनका कोलैबोरेशन यूनाइटेड नेशंस के साथ आता है और ये प्रोजेक्ट था वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने और जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए। दोस्तों उनका सॉन्ग उड़ने दे यूनाइटेड नेशंस वॉलंटरली ट्रस्ट फंड प्रोजेक्ट म्यूजिक टू इंस्पायर आर्टिस्ट यूनाइटेड अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पार्ट बना। सोचिए दोस्तों जब एक आर्टिस्ट की वॉइस सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि अवेयरनेस और चेंज का टूल बन जाती है, तब वो सिर्फ सिंगर नहीं रहता, वो इन्फ्लुएंस बन जाता है। इसी के साथ ही आइए आपको एक और गीत सुनवाते हैं नीतू मोहन की आवाज में उनके नए एल्बम से।
1: हाँ भाई पहुंच गए नीमराना। आप पना तेरे को मुंदरी फिर चार घंटे में बोला था, तीन में बचा दिया तेरे भाई ने।
2: चल चल चल चल चल चल।
1: अरे लगता आंटी अंकल पहुंचे नहीं, हम पहले ही आ गए।
2: अबे ये तू कहां ले आया यार?
1: नीमराना
2: जयपुर। यार जयपुर वाला नीमराना नहीं, पटियाला वाला नीमराना।
1: पर नीमराना तो एक ही है।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज हमने देखा नीति मोहन का सफर एक ट्रेंड क्लासिकल सिंगर से लेकर बॉलीवुड की चार्ट बस्टर बॉयज तक, रियलिटी शो से लेकर बिग बैनर फिल्म्स तक, और स्टूडियो रिकॉर्डिंग से लेकर इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस और सोशल कैंपेन तक। और दोस्तों, इस सफर की सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जर्नी फास्ट नहीं थी, ये जर्नी ग्रेजुअल थी, स्लो ग्रोथ, कंसिस्टेंट एफर्ट और कंस्टेंट लर्निंग। और दोस्तों, नीति मोहन ने अपनी वर्सेटिलिटी से प्रूव किया कि एक सिंगर को एक जेनरे तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, और इसी रेंज ने उन्हें एक कंप्लीट आर्टिस्ट बनाया। आज जब हम उनकी वॉइस सुनते हैं तो वो सिर्फ गाना नहीं होता, वो एक एक्सपीरियंस होता है, और यही होता है एक ट्रू कलाकार का इम्पैक्ट। इसी के साथ ही दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आप सुन रहे थे आज के कलाकार कार्यक्रम। दोस्तों, अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी नए आर्टिस्ट के साथ, नए सफर के साथ। तब तक के लिए म्यूजिक के साथ जुड़े रहिए और अपनी जिंदगी को भी एक प्लेलिस्ट की तरह फील कीजिए, हर मूड हर इमोशन के साथ। चलिए दोस्तों, चलते चलते अब आपको एक और गीत सुनवाते हैं नीति मोहन की आवाज में।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज के कलाकार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको बता दूं, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे निशी बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी बोली में समाचार। निशी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए इसी के साथ दोस्तों, अब आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को। आइए इसी के साथ सुनते हैं पहला खूबसूरत गीत।

शिक्षक सोच के की था की किता दिल देके दिल लेने दी लालच करी तू लिया जे तूने प्यार भी लालच नाल किया।

0: दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है और आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हेलो फरमाइश का।
1: हेलो फरमाइश।
2: हाँ जी सर, नमस्कार सर।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
1: जी लोकेंद्र जी, कहिए कैसे हो आप।
2: बस बिल्कुल सर जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आपके आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए रहते हैं। बिल्कुल
1: जी जी जी, इसी तरह से हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करते हुए।
2: जी सर, हमें जी भी बहुत अच्छा लगता है। सर जी, आपके यहाँ का मौसम कैसा है।
1: जी हमारे यहाँ तो रिमझिम बारिश हो रही है।
2: हाँ हाँ हाँ, क्या जी बात है, आपने रिमझिम बारिश की बात करके बिल्कुल मन को खुश कर दिया है, क्योंकि हम तो अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं, भरी उमस हो रही है यहाँ पर।
1: ओहो जी जी, अभी तक बारिश हुई नहीं है आपके वहाँ।
2: हाँ, एक प्री मानसून बीच में हुआ था थोड़ा सा।
1: अच्छा।
2: पर उससे थोड़ा मौसम ठंडा हुआ, पर उसके बाद में फिर उमस भरी होने लग गई, चिपचिपाहट वाली जो गर्मी होती है ना वो हो रही है।
1: ओके ओके ओके,
2: पर प्रकृति है, सभी मौसम का आनंद लेना चाहिए।
1: हाँ जी,
2: क्योंकि अपन ठंड में रहते हैं, बरसात भी रहती है और गर्मी भी रहती है, तो गर्मी का भी एक अलग ही आनंद रहता है।
1: हाँ जी सही कहा आप, हर मौसम का अलग ही अंदाज है, अलग ही।
2: हाँ हाँ, तो गर्मी को भी तो झेलना सीखना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल
2: जीवन है, इसमें शरीर को मतलब बनाया ही ऐसा गया है कि सभी मौसमों को

0: उसको आज भी हम सुनते हैं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि सबसे पहला डिस्को वही लेकर आए थे फिल्म संगीत की दुनिया के अंदर।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा, बप्पी दा का जो संगीत है, म्यूजिक है, वो हमेशा अमर रहेगा।
0: बिल्कुल जी। सर जी,
1: तो किन लोगों के साथ इस गीत को सुनना पसंद करेंगे आप?
0: यह गीत सबसे पहले तो आकाशवाणी के लिए रहेगा, और हमारे शारदा प्रसाद जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, प्रेम सिंह जी हैं, श्रीपाल गोयल जी हैं, उदयलाल टेलर साहब जी हैं, दिलीप पाहुजा जी हैं, सुनील झा जी हैं, और राम बाबू मालवीय भोपाल से हैं, तुकाराम यादव जी हैं, और हमारे मित्र हैं गौतम जी हैं, उनके लिए भी यह गीत रहेगा, और आकाशवाणी के लिए यह गीत रहेगा कि याद आ रहा है तेरा प्यार।
1: तेरा प्यार, क्या बात है। जी जी लोकेंद्र जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना डिस्को डांसर फिल्म।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आदरणीय बागरा साहब, चादर सप्रेम, प्यार भरा नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति, श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश के आदरणीय बागरा साहब से वार्तालाप कर रहा हूँ आकाशवाणी ईटानगर से। मानवर आप कैसे हैं, आप बताइए अपने शब्दों में।
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए पसंदीदा गाना पेश करता हूँ।
1: जी इसीलिए तो बागरा साहब से वार्तालाप करने के लिए हम श्रोता लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, और जब फोन लग जाता है बहुत ही अच्छा लगता है। और ये कार्यक्रम जब हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से न्यूज ऑन AIR पर सुनते हैं तो हमारा हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है, बहुत ही खुशी प्रसन्नता होती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ के लिए। और कहिए आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मानवर बस जून का महीना है, गर्मी ही गर्मी है, पसीना ही पसीना है।
0: ओहो,
1: चिलचिलाती हुई धूप रहती है, गर्म गर्म हवाएं चलती हैं, और ऐसे वातावरण में जब गीतों की रिमझिम रिमझिम बारिश आकाशवाणी इस सागर से होती है तो हम उसमें सराबोर होते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं।
0: क्या बात है, कितनी अच्छी तरह से आपने अपनी बातों को रखा। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे?
1: बस यूँ ही जून का महीना और गर्मी की बात चली है हमारी आपकी बातचीत में
0: जी,
1: तो एक पुराना गाना किशोर कुमार साहब और आशा भोसले जी ने गाया है, आज मेरी जान ये है जून का महीना, गर्मी ही गर्मी पसीना ही पसीना। मौसम को देखते हुए आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ।
0: जी जी जी, जी। बिल्कुल मौसम से मिलता हुआ गाना आपने चुना है। और ये कौन सा फिल्म का गाना है?
1: ये फिल्म का नाम है सबाब।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों के साथ सुनना पसंद करेंगे इस गीत को?
1: ये गीत मैं अपने परम आदरणीय मित्र, दोस्त, यार, जो भी कहिए, मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा, आकाशवाणी ईटानगर से वाग्रा साहब को सर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी मुझे समर्पित करने के लिए।

0: और साथ में याद करना चाहता हूँ अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेंद्र वर्मा, राजू यादव, पूरन वर्मा और पुष्करनाथ जी, पुरुषोत्तम जी, राकेश कुमार जी, गोल्डी जी और साथ में अर्जुन प्रधान जी हैं और हमारे मित्र हैं टेचर अग्रवाल जी। इन सभी दोस्तों के साथ में ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ आरडी वाग्रा साहब के साथ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी, सुनते हैं आपके पसंद का गाना सबाब फिल्म से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। हृदय धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

पसीना गर्मी गर्मी गर्मी ही गर्मी पसीना ही पसीना।

0: आजा
1: जा।
0: अरे आजा मेरी जान, ये है जून का महीना।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो फरमाइश। कुलूम भाई सर।
2: कुलूम भाई।
3: अमोल बसुमतारी को
2: कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: हाँ तो मैं गाने के फरमाइश के लिए कॉल किया था।
2: ओके जी जरूर सुनाएंगे। कौन सा फिल्म का गाना आपका?
3: नाम है खिलौना फिल्म से हम जान के हैं, गाने को सुनना है।
2: और किन लोगों को सुनाना पसंद करेंगे आप?
3: मैं दोस्तों को याद करना चाहूँगा। मेरे दोस्त भाईकुन मुंडा है, बिमल बसुमतारी है, रमेश पात्रो, जोगेंद्र रोंपी है, और भगवान सिंह परमार, रमेश प्रजापति है, तुकाराम यादव है, शिवा लोहार और गजराज सिंह लोधी और हमारे प्रेम मजीत चक्रवर्ती है और अनुप कुमार जी है और चंद्रकांत टाइड है, सुनाराम लालू और हमारा दोस्त है गुवाहाटी का, बहुत सारे हमारे अरुणाचल आकाशवाणी और एफएम और ईटानगर सुनने वाले सभी दोस्तों को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
2: ओके सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं तो अमल जी
3: को भी और नूरी मैम को भी और हमारे सभी आरजेएसओ को भी डेडिकेट कर रहा हूँ।
2: ओके मुझे और नूरी मैम और सभी आरजेएस को डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनते हैं आपके पसंद का
3: है क्या सर? हमारे में तो बारिश चल रहा है, कल से हमारा पठार में धान भी लगाया हुआ है रहा है, इसलिए धान लगाना सकता है।
2: ओके ये तो बहुत ही खुशी की बात है
3: जी।
2: आपका जो धान है
3: लगाया है और पत्थर में गया था मैं अभी पत्थर से आके प्रोग्राम में कॉल लगाया है।
2: अच्छा
3: तो सुनते रहना पड़ेगा और प्रोग्राम को तो छोड़ना नहीं है हमारे, अभी भी और एफएम बजते रहते हैं, अभी फिल्मी लहर में अच्छे से गाना आ रहा है और रेडियो
2: अच्छा अच्छा अच्छा
3: बहुत अच्छा अच्छा गाना दे रहे थे।
2: ओके आप तो काफी सारे प्रोग्राम सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर के।
3: काम के साथ साथ प्रोग्राम को भी हर रोज मैं रेडियो लगा के रखता हूँ।
2: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी।
3: आपका जो एरोन एफएम है ना उसको एफएम का माध्यम से भी सुन सकता है।
2: जी जी जी हाँ जी हाँ जी
3: के माध्यम से भी।
2: ओके बहुत ही अच्छी बात है। आप
3: इसके कार्यक्रम को हम हर गुरुवार को आता है हेलो फरमाइश प्रोग्राम, उसको हमारा वो अरुणाचल का ही एक रेडियो स्टेशन आता है वहाँ पे सुनता हूँ।
2: अच्छा
3: 100.3 मेगाहर्ट्ज़ में।
2: ओके ओके तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते रहिए अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्कार मेरे दोस्त
0: जी।
1: क्योंकि ताकत की जरूरत तब होती है जब कुछ बुरा करना चाहते है ना
0: जी,
1: नहीं तो दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी।
0: प्रेम ही काफी है जी। बहुत ही सही बात कही आपने
1: जी। क्योंकि मतलब इस कार्यक्रम को दिल और जानों से हम प्यार करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: प्रेम की भावना से लग गया
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी।
1: चलिए
0: जी अपना परिचय हो जाए।
1: अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है रामकृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, असम से तालुका
0: जी। असम से हमारे दोस्त अनूप दा। कैसा है मौसम आपके वहाँ अनूप दा
1: जी?
0: मौसम कैसा है आपके वहाँ अभी?
1: क्या बात, मौसम की जानकारी तो मैं आपकी तरफ से अखिल जानना चाहता।
0: अच्छा अच्छा,
1: आपने बोल ही दिया क्योंकि हमारे काल से क्या हुआ तो वातावरण जो है बारिश का वातावरण तो आ ही जाता है ऐसे मतलब।
0: अच्छा,
1: तो उसके बाद थोड़ा विंड ब्लो होके चला जाता है, ऐसे माहौल हो रहा है।
0: ओके,
1: इतना बारिश नहीं हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन
0: अच्छा।
1: जब आते थोड़ा थोड़ा
0: ओके
1: थोड़ा थोड़ा, लेकिन बारिश होने का एक गजब के बारिश होने का एक
0: चांसेस
1: पैदा करते हैं, लेकिन
0: ओके
1: वो नहीं होता।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तक बारिश अच्छा से हुआ नहीं।
1: लेकिन बारिश से होने से बहुत अच्छा होता है क्योंकि बहुत गर्मी है हमारे यहाँ पे। और आपके वहाँ के
0: जी
1: नजर आके?
0: हाँ, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है, कल रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बहुत ही बढ़िया मौसम है
1: जी। क्या बात, हमारे बारिश नहीं हो, थोड़ा के बारिश हो रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: तो चलिए आज इस प्लेटफॉर्म में गाने का
0: जी
1: जाना चाहता।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल
1: जी। और गाने का बोले, फिल्म का नाम है अफसाना प्यार का।
0: अफसाना प्यार का ओके।
1: और गाने का बोले से है, टिप टिप टिप

0: ये गाने तो क्या बोलो, मतलब ये जो अमित कुमार जी है
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: और साथ में आशा भोसले जी है
1: ओके,
0: शायद,
1: अच्छा अच्छा जी,
0: और इस गाने को मैं डेडिकेट कर रहा हूँ।
1: हाँ जी,
0: पहले है हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जिसका नाम है बोके बागरा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: और
1: जी,
0: सेकेंडली हमारे नूरी मैम के लिए,
1: ओके,
0: और बापन आचार्य, बसंती लाल सूर्यवंशी जी, देवजीत दास, हमारे अमर सिंह साहू जी, श्रीकांत जोशी जी, लुकेंद्र वर्मा जी, और कश्मीर से हमारे पुरुषोत्तम कुमार जी के लिए। तो चलिए
1: ओके,
0: दोस्त, बातचीत को यहीं पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू
1: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: अनुपम, ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते
1: सर, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ सर।
0: सतीश रघुवंशी जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप
1: जी? हम तो बढ़िया सर जी, और मुझे आज बेहद खुशी हुई है कि मेरा फोन 2 से 3 महीने बाद लगा सर जी आकाशवाणी ईटानगर पे।
0: अच्छा, आपने ओके ओके जी, आपने नए श्रोताओं को मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से थोड़ा गेप रख,
1: मैं सोचता हूँ सर कि सभी श्रोताओं को मौका मिले सर जी, और जो भी श्रोता है हमारे तो आकाशवाणी में उनको गैप भी करना जरूरी है सर
0: जी, बिल्कुल।
1: नए श्रोताओं को भी मौका मिल जाता है, हमको उनकी आवाजें सुनने को मिल जाती है।
0: हाँ जी, बिल्कुल सही बात कही आपने, नए श्रोताओं को भी मौका देना चाहिए
1: जी।
0: और कहिए, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: जी सर, हमारे यहाँ सर कल बारिश हुई सर, और परसों के दिन भी, और अभी ऐसा लग रहा है सर कि 1-2 घंटे बाद बारिश हो सकती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी, तो मौसम बहुत ही सुहाना है, बढ़िया
1: जी। बिल्कुल सर जी, मौसम ने हमारे इधर पे एमपी में छिंदवाड़ा में करवटे बदल लिया सर अभी।
0: ओके, क्या बात है जी जी जी
1: जी जी बिल्कुल जी सर जी। और हमको एक बहुत अच्छा लगा सर जी, हमारे यहाँ अभी खेतों में बुआई चालू हो गई सर, मक्के की फसल लगना चालू हो गई है।
0: अच्छा अच्छा,
1: और गर्मी से भी राहत मिल गई सर जी, बहुत अच्छा लग रहा है सर हमको अभी।
0: ओके जी जी जी, बारिश होती रहे, हम यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से, ताकि आपके जो फसल है वो अच्छा हो।
1: जी जी
0: जी, तो कहिए आज इस सुहाने मौसम में कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: जी सर, आप मुझे सुना दीजिए सर, फिल्म का नाम है अनाड़ी, और गीत के बोल रहेंगे सर जी, क्या मौसम आया है, ये वाला गीत।
0: क्या बात है, क्या बात है
1: जी। इस गीत में कुछ दोस्तों को भी डेडिकेट करना सर जी।
0: जी जी जी, हाँ जी बिल्कुल
1: सर। सबसे पहले तो आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी,
1: और हमारे मित्र हैं सर जी, गुड़वंत कड़ू जी हैं, लोकेंद्र वर्मा जी हैं, आत्माराम पाटिल जी हैं, नारायण प्रधान जी हैं, मुरलीधर ढोले जी हैं, शारदा प्रसाद प्रजापति जी हैं, राजू लवानिया जी हैं, टेकचंद अग्रवाल जी हैं, और सर सुनने वाले सर सभी को डेडिकेट रहेगा।
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं जी जी। तो सतीश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: थैंक यू सर।
0: ओके थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते
0: जी नमस्ते। हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी थैंक यू सो मच। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी उज्जैन से हमारे मित्र प्रेम सिंह सिसोदिया, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। बड़ी तेज हवाएं चल रही है हमारे यहाँ पे, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: जी बिल्कुल, अभी खेतों को समतल बनाया जा रहा है, सोयाबीन की फसल लगाई जाएगी हमारे यहाँ पे।
0: अच्छा, बारिश होते ही फसल लगाई जाएगी?
1: हाँ, 25 जून के बाद मानसूनी बारिश होती है ना।
0: ओके। जी
1: जी, उसमें फसल लगाई जाती है सोयाबीन की, और जब भरपूर सिंचाई हो, मतलब पानी गिरता है ना, और खेत में पानी हो जाता है, तालाब भर जाते हैं, नदियां भर जाती है, कुएं भर जाते हैं, तो सोयाबीन की फसल कटाई होने के बाद में गेहूं और लहसुन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने खेती के बारे में।
1: जी, बड़ी मात्रा में फसल पैदावार होती है हमारे यहाँ पे। जी, मतलब व्यवसाय के रूप में बेचते हैं हम फसल को, और मजदूरों द्वारा खेतों में काम करवाते हैं।
0: जी
1: और
0: जी,
1: हम साथ में हम भी काम करते हैं, और मोबाइल पर कार्यक्रम भी सुनते हैं।
0: क्या बात है जी। और आपके वहाँ का सोयाबीन वगैरह कहाँ कहाँ तक जाती है?
1: जी, हमारे सोयाबीन यहाँ पे महाराष्ट्र में जाती है, मुंबई तक जाती है।
0: अच्छा अच्छा।
1: और इधर इंदौर से भी आगे तक जाती है, बट हम तो हमारे जो पास में मंडी पड़ती है ना,
0: जी जी,
1: नागदा, वहाँ पर इसकी सेल कर देते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग वहाँ पे दे देते हैं और वो वहाँ से आगे चला जाता है।
1: हाँ, वहाँ से मतलब बनिए खरीद के उन्हें आगे सप्लाई कर देते हैं, बट हमें भाव अच्छा मिल जाता है।
0: अच्छा अच्छा जी जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी हाँ,
0: बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने प्रेम सिंह जी। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
1: जी, कान्हे के बोले, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी अगर तेरा साथ हो।
0: ओके जी, और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे?
1: जी, हमारे दोस्त हैं, सबसे अजीत दिलकश हमारे प्रिय मित्र हैं, लोकेंद्र वर्मा जी, भगवान सिंह परमार, आशुतोष अभिनय, संगीता जी, और गौतम राय बोले सर, जो हमें बार बार मतलब कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हम मोबाइल द्वारा कार्यक्रम सुनते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात है प्रेम सिंह जी। तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: थैंक यू। ओके।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश।
1: जी सर नमस्कार, मैं राम बाबू मालवी बोल रहा था सर, कोलार रोड भोपाल से।
0: जी भोपाल से हमारे मित्र राम बाबू जी, कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ सर, और आप सुनाओ सर, आप कैसे हो
0: जी?
1: और आकाशवाणी टीम कैसी है सर, और अभी मौसम कैसा है वहाँ का?
0: ओके जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आकाशवाणी ईटानगर टीम भी बहुत ही बढ़िया है और मौसम भी बहुत ही अच्छा, सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: सर, मतलब आधे दिन के लिए बारिश तो इधर भोपाल में भी होती है और
0: अच्छा
1: आधे दिन धूप के लिए रहती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा
1: बिल्कुल, अब क्या है कि मानसून पूरे भारत में 18 से 22 तारीख तक पूरे में हो
0: जी
1: जाएगा। मानसून खाना वाना खाया और फिर सोचा कि फोन लगा लेते हैं। हमारे मित्र जी ने बताया था, लोकेंद्र वर्मा जी ने, बोले वहाँ की रिकॉर्डिंग लगी है।
0: ओके जी, लोकेंद्र जी को
1: तो
0: भी बहुत
1: हमने
0: बहुत
1: लगाया
0: धन्यवाद।
1: बहुत अच्छे मित्र है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी, और आप
0: ओके
1: जो हमारे मित्र हो सर, ऐसी कोई बात नहीं।
0: जी जी जी हम भी आपके मित्र हैं।
1: जी
0: जी
1: हाँ जी बिल्कुल सर।
0: जी तो चलिए आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए राम बाबू जी।
1: फिल्म है सपने साजन के, उसमें एक गाना है सर, उसके गाने के बोल इस प्रकार है, सच्ची सच्ची कहो तुमने क्या किया, इस प्रकार के गाना है सर। उसमें मुझे थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है।
0: अच्छा ठीक है, मैं ढूंढ निकालूंगा।
1: मेरे इस प्यार में सच्ची सच्ची कहो तुमने क्या किया है, इस प्रकार का गाना है
0: अच्छा
1: सर।
0: अच्छा अच्छा ओके जी हाँ हाँ
1: जी
0: हाँ
1: सर,
0: जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को
1: वो
0: डेडिकेट
1: के
0: करना
1: गाना
0: चाहेंगे?
1: तो मैं पूरे दिन गाता रहता है, लेकिन कभी कभी के ध्यान नहीं आता है,
0: जी हो जाता है,
1: भूल
0: हो
1: जाते
0: जाता
1: हैं
0: है।
1: ना।
0: हाँ जी, और
1: जी
0: किन लोगों को
1: बिल्कुल
0: सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी सर, सबसे पहले आपको
0: बहुत
1: और
0: बहुत धन्यवाद।
1: हमारे लोकेंद्र वर्मा जी और जितने भी सुनने वाले सभी दोस्तों के लिए रहेगा
0: सभी
1: ये
0: दोस्तों को
1: गाना।
0: आप सुनाना चाहते हैं जी। तो राम
1: हाँ
0: बाबू जी
1: जी
0: कॉल
1: बिल्कुल
0: करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: जी, नमस्कार
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम हेलो फरमाइश यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत। लेकिन इससे पहले आइए दोस्तों ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500.
3: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
4: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host, Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम वस्तन मेलेडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही दोस्तों अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का। आइए आनंद लेते हैं भूले बिसरे गीतों का।

दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना किशोर कुमार की आवाज में फिल्म कल आज और कल से। अगला गीत आप सुन पाएंगे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गोलमाल से।

तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही सदाबहार हिंदी फिल्म में गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का ये सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। और इसी के साथ ही अब हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा की समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के अनेकों कार्यक्रमों के साथ हम आपके सेवा में पुनः हाजिर होंगे कल सुबह के 5:48 पर एक नई सुबह की नई शुरुआत के साथ। और दोस्तों, आपको बता दूं, अब से कुछ ही क्षणों में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल चैनल की ओर, जहां से आप सुनेंगे FM गोल से रिलेट कार्यक्रम। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक और स्टूडियो तथा HPT में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एत्य तथा तकनीकी अभियंता ताना अतुम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि और जय हिंद।

0: So you create obstacles to stop Bangladeshis or Rohingya from coming in illegally. To what you referred to, the Home Minister's statement that there will be detection, deletion, deportation. First, you have to detect who are these people. Then you have to delete their names from all documents over here. It's not only voters' lists, but for instance, Aadhaar, various benefit programs of the government. Many of them have even acquired passports. So all that has to be cancelled. And then you have to send them back to Bangladesh. There are, again, mind you, an N number of problems in this because various aspects of the citizenship law, they come into play. We don't have a very uncluttered citizenship law because it has periodically been amended, and it is something, it's a legacy law. So it has been periodically amended, but it has huge number of black holes in it. For instance, somebody who enters India illegally and is an illegal alien over here and then gives birth to someone, what is the status of that person? Can that person claim citizenship by birth? So you have to look at various aspects of the Citizenship Act, and to my mind, the time has come to chunk the Legacy Act and have a new Citizenship Act which is not cluttered, which sort of makes it very clear where we stand as far as citizenship is concerned. And along with that, you would have to conduct your NRC because we are possibly the only country in the world which does not have a register or a list of people who are citizens of this country.
1: Kanchan ji's debate may a special intensive revision of electoral rolls be fit?
0: So I was just coming to that. Lastly, when you talk of detection and deletion, the SIR process, what you do is every few years you take your electoral lists and you have an intensive review. So there are various names on the list which will automatically fall off. People who are dead, people die. So you have to remove their names. People who are no longer resident either in that place or in that state or in the country, their names have to be removed. And lastly, people who have no right to have their names on the voter list, those names have to be removed. And it's, why is it that in West Bengal we ran into so much problem, whereas in other states, Kerala had an SIR, Tamil Nadu had an SIR. Right now, I mean, some months ago, UP had an SIR. Other states are now having an SIR. So why is it Bihar had an SIR? So why is it that West Bengal had so much problems? Because you had created a vote bank and you didn't want that vote bank to be removed from the voting list. And that, I think, is very, very dangerous, not only because it sort of destroys the very concept of democratic politics, but unless your voters' list is clean, your electoral process cannot be clean. So it is very important for the hygiene of elections to have clean voter lists. And this is something which most people understand, but politicians who exploit illegal aliens in the country for their political purposes or as voters who will vote for them, and thus it's a guaranteed vote. They are causing enormous damage to the security of the country, to the future of the country. And most importantly, they are sort of bleeding the idea of democracy, electoral democracy, for their own petty interests.
1: Kanchan ji, ek aur jo mudda raha ye Bengal ke election mein, mahila suraksha bahut bada mudda raha. RG car ko leke bahut sare rebel MPs jo TMC ke, unhone record pe bola hai ki us waqt jis tarike se conduct kiya gaya wo theek nahi tha.
0: खैर उस वक्त तो ये रेबल तथा कथित रेबल एमपीज और एमएलएस, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा था. ये एक विषय जरूर बन गया था, महिला सुरक्षा. ये हैड बिकम अ वेरी बिग इश्यू ओवर देयर. आरजी कर केम टू सिंबलाइज की द कंडीशन विच प्रिवेल्ड इन वेस्ट बंगाल. एक ड्यूटी पर डॉक्टर, उसको अस्पताल के अंदर शी इज रेप and then murdered, and then the callous response of the authorities, the hospital authorities, the police and the government. And Mamata Banerjee was Home Minister. She was also the Health Minister. And of course, she was the chief minister. In all three roles, she failed to respond to that tragedy. And Arjikar, believe me, was a ghastly tragedy, but there were various many other such incidents in the rural areas where young girls were picked up. You have Sondesh Khali incident where women were abused, sexually abused in party offices. All the details which are now coming out about student union offices, that those were actually houses of illicit pleasure. Yeah. So this is the kind of architecture you had put into place to stay in power. Obviously, people won't accept.
1: So, Kanchanji, going forward, West Bengal Chief Minister Subhendu Adhikari has now announced a series of investigations. You know, he has set up committees to look into excesses across the spectrum. One is what you just said, and also the extortion rackets, the cut money rackets that were going on. That will help.
0: It is important that there should be fair investigation, fair prosecution, and fair justice. Because अगर आपने जो जिन्होंने भी ये गलतियां की हैं, ये अन्याय किया है, इनको अगर सजा नहीं मिलता है, if they are not punished, then tomorrow you will find another set of exploiters coming into play. So ये जरूरी है. दूसरी बात जो है, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो डिटेल्स अब उभर के आ रही हैं, किस किस्म की एक्सप्लॉयटेशन होती थी, किस किस्म का तोलाबाजी हो रहा, किस किस्म का कट मनी. यू सी, दीज आर ऑल थ्री थिंग्स. तोलाबाजी इज कोई अगर रेडी भी लगाता है, ठेला लगाता है, उसका दिन में 100 रुपए का, या कोई ऑटो चलाता है तो उसका दिन में 100 रुपए का रोजगार होता है, तो आप उससे जाकर 50 रुपए उगा लीजिएगा. दैट इज तोलाबाजी. कट मनी है कि अगर कोई काम हो रहा है, सरकार काम करवा रही है, पंचायत का काम है, कुछ है, जो भी है, उसमें जो ठेका जिसको मिल रहा है, रास्ता बनाने का, ड्रेन बनाने का, टैप लगाने का, आप उससे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट है, उसका एक परसेंटेज आप उससे निकाल लीजिएगा, रंगदारी टैक्स जिसे कहते थे. सो दैट वॉज कट मनी. एंड देन यू हैड सिंडिकेट्स. आप घर बना रहे हैं तो आपको अपना ईंटा, बालू, सीमेंट, लोहा पार्टी के लोगों से खरीदना पड़ेगा, और उन्हीं के रेट पर खरीदना पड़ेगा, उनका जो ब्रांड है, उनका जो भी है, वही लेना पड़ेगा, आपका कोई इसमें ऑप्शन नहीं है. या आप अपना घर बेच रहे हैं, समझिए आपके पास मकान है जिसका वैल्यू 10 करोड़ है, वो लोग आकर बोलेंगे, सिंडिकेट कहेगी जी ये मकान हम लोग तय करेंगे, आप कितने में बेचोगे, किसको बेचोगे, और 1 करोड़ का बिकवाएंगे, बाकी 9 करोड़ से वो लोग आधा 4.5 करोड़ अपने जेब में ले लेंगे.
1: सो एन एब्सोल्युटली
0: एक्सप्लॉइटेटिव. इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट, इट वाज अ मॉन्यूमेंटल, क्या कहें, इट वाज अ फैक्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज एन इंडस्ट्री ऑफ करप्शन, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट.
1: एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी. अपने विक्ट्री स्पीच में प्रधानमंत्री ने May 4 को एक बात का जिक्र किया था. उन्होंने कहा था कि इंडिया की जो गोल्डन एज जब थी, तो 3 भाग हमारे देश के उस गोल्डन एज के पिलर्स थे, अंग, बंग और कलिंग. तो अंग मतलब बिहार पहले भाजपा की विक्ट्री में आ चुका था, उसके बाद ओडिशा भाजपा जीत चुकी थी, और अब बंगाल की बारी थी, वो अब May 4 को रिजल्ट में हो गया. तो कितना इम्पोर्टेंट आप इस स्टेटमेंट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करना है तो ये 3 भागों को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि ये पिछड़ गए हैं भारत की विकास यात्रा में.
0: ये बात सही है, और अंग बंग कलिंग जो आप कह रहे हैं, बट उसमें आप असम को भी जोड़िए, जो अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी जोड़िए. और जब तक ईस्ट में डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक ईस्ट की इकोनॉमिक कहानी एक कॉम्पिटिटिव स्टोरी नहीं बनेगी, तब तक भारत अपने आप को विकसित भारत नहीं कह पाएगा. अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, वेस्ट इंडिया काफी डेवलप्ड है, साउथ इंडिया भी काफी डेवलप्ड है, ईस्ट इंडिया बस एक ही जगह रह जाता है जहां पर अभी तक कुछ खास काम नहीं हो पाया. मिडिल इंडिया, आप अगर मध्य प्रदेश को देखें, मध्य प्रदेश की जो रिकवरी स्टोरी है, बीमारू प्रदेश से आज कहां पहुंच गई है. अगर आप छत्तीसगढ़ को देखें, नया प्रदेश है और इतनी डिप्राइव्ड जोन थी कि उसको अलग स्टेट बनाना पड़ा, आज छत्तीसगढ़ कहां पहुंच गया, और वेस्ट बंगाल वहीं का वहीं पड़ा रह गया. तो हमें आगे का देखना पड़ेगा, एंड वेस्ट बंगाल कैनॉट जस्ट बी अ पोटैटो इकोनॉमी. that we produce the country's most largest amount of potatoes.
1: It's like you heard Kanchan Gupta ji, that the destiny of India is inextricably linked to the destiny of Bengal, because you would recall that it was from Bengal that the British

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई जिम्मेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता अंकित कुमार की एक रिपोर्ट।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, नवाचार और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है।
0: शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह के दौरान कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की है कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया गया। मध्य भारत की यह पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जांच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया, इसे विफलता की ओर बढ़ता कदम बताया। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त ऋण तंत्र के लिए नियम अपनाए। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आज एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण विषय पर आयोजित इस बैठक में G7 देशों, साझेदार देशों तथा विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी और अन्य नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर सामूहिक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और G7 देश वैश्विक विकास, सतत प्रगति और मानव कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की यात्रा पर आज एविया पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत बेहतर और समृद्ध भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अधिक ब्यौरा प्रधानमंत्री की यात्रा को कवर कर रहे हमारे संवाददाता से।
1: इस सम्मेलन में भारत की मौजूदगी पूरी तरह रणनीतिक है। कई G7 अर्थव्यवस्थाएं जिस तरह से बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों और सप्लाई चेन की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, वे अब भारत को सिर्फ एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नई दिल्ली ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीकी नवाचार के लिए एक बेहद भरोसेमंद और आधारभूत भागीदार के रूप में उभरा है। भारत के दृष्टिकोण से यह G7 शिखर सम्मेलन अपने राष्ट्रीय हितों और ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का एक अहम अवसर है। नई दिल्ली का मुख्य जोर व्यापार, और मजबूत सप्लाई चेन में गहरे सहयोग पर है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया सक्रिय रूप से विश्वसनीय आर्थिक भागीदारों की तलाश कर रही है। विश्व दर्पण के लिए एविया फ्रांस से अंकित कुमार।
0: G7 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कल होने वाली मुलाकात को सम्मेलन के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रमुख औद्योगिक देशों के समूह G7 के एविया शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 वर्षों से अधिक समय से जारी रूस यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। सम्मेलन के मेजबान और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव

0: वो बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की भी सवेरे की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता केवल 75 मिनट के लिए ही हुई और निर्धारित समय से पहले ही समाप्त हो गई। यूक्रेन पर ये चर्चा अमेरिका द्वारा ईरान के साथ 3.5 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने संबंधी समझौते की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे राष्ट्रपति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और अब यूक्रेन के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के अमेरिका पर पड़ने वाले प्रभावों को अपेक्षाकृत कम बताया, लेकिन संघर्ष में हुई बड़ी संख्या में मौतों पर दुख व्यक्त किया। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो इसके परिणाम स्वरूप भयानक तबाही मच सकती है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर खतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनान में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक जरूरी होगा। इस बीच अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि मंडल ऐतिहासिक शांति समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने के लिए शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में मिलेंगे। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वथानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
2: UNSC reform would be grossly inadequate.
3: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहल पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र JCM के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। ये पेरिस समझौते के अंतर्गत भारत और जापान दोनों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान NDC लक्ष्यों की प्राप्ति में भी योगदान देगा। दक्षिणी जिम्बाब्वे के ट्रायंगल में आज बस और ट्रेन की आपसी टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 25 घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये दुर्घटना रेलवे क्रॉसिंग पर हुई जब एक मालगाड़ी बस से टकरा गई। जिम्बाब्वे राष्ट्रीय रेलवे के प्रवक्ता एंड्रयू कनाम्बुरा ने कहा कि बस चालक ने रेलवे क्रॉसिंग पार करने से पहले रुककर आने वाली ट्रेन की जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि ये रेलवे सुरक्षा नियमों का उल्लंघन था जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के 400 से अधिक शीर्ष खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत की पहली और एकमात्र तलवारबाज ओलंपिक खिलाड़ी CA भवानी देवी की अगुवाई में 12 महिला और 12 पुरुष खिलाड़ियों वाली भारतीय टीम प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य

0: मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के बीच खेले गए मुकाबले भी 1-1 से ड्रॉ रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कनाडा और ब्रिटेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल अस्थायी सीट को बढ़ाने के प्रस्ताव को खारिज किया। इसे विफलता की ओर बढ़ता कदम बताया। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I am R. Raghu with the World News.